0: जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। यह वाक्य हमें बताता है कि जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। जब हम दूसरों की शिकायतें करते हैं तो हम अपने जीवन में नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। इससे हमारे जीवन में तनाव, चिंता और अशांति बढ़ सकती है। खुद को बदलने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को बदलते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। कारपेट बिछाने की सादृश्यता हमें बताती है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने आप को बदलना अधिक आसान और प्रभावी है।
1: सुबह की पहली किरण हमें याद दिलाती है कि हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज को एक नई उम्मीद, नई हिम्मत और नए मुस्कान के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह हमें एक और मौका देती है बेहतर बनने का और बेहतर करने का। श्रोताओं, आप सभी को एक खूबसूरत और सफल दिन की शुभकामनाएं। सुप्रभात, नमस्कार। ईटानगर, आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में स्वागत है। आज मई 2026 की 9 तारीख है और हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:55 हो चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा। मैं आपको बता दूं कि इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगचांग एवं तकनीकी अभियंता ताना आतुम। और अपनी आवाज के साथ मैं आपकी आरजे बिंदुंग दिंदो मांज। श्रोताओं, इससे पहले कि हम हमारी प्रसारण सभा की शुरुआत करें, चलिए मैं आपको बता दूं कि अब से लेकर सुबह के 11:10 तक में के प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए, जिसके बाद प्रस्तुत होगा दोस्तों हमारा भक्ति गीत का कार्यक्रम। 6:40 पर हम लेकर आएंगे कालो श्रोताओं का कार्यक्रम कालो भाषा में समाचार, जिसके बाद 6:45 पर हम लाएंगे सुबह सवेरे का एक खास कार्यक्रम। 7:10 पर दोस्तों आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम आपातानी भाषा में समाचार, जिसके बाद 7:15 पर हम लाएंगे मॉर्निंग इंफरटेनमेंट प्रोग्राम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज एंड न्यूज फ्रॉम लोकल डेलीज। फिर 7:35 पर हम सुनेंगे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम तागिन भाषा में समाचार। 7:40 पर हम लाएंगे सदाबहार का खास कार्यक्रम, देंगे आपको वेदर अपडेट, सुनाएंगे आपको कुछ बेहतरीन हिंदी गीत। ठीक 8:00 आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज के लिए, जिसके बाद दोस्तों 8:30 पर आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज के लिए। 8:40 पर हम आपके लिए लाएंगे हेलो ईटानगर का कार्यक्रम दोस्तों, जिसके बाद ठीक 9:00 आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। 9:10 पर हम लाएंगे आपके लिए फिल्मी गपशप, बताएंगे आपको बॉलीवुड की दुनिया में क्या चल रहा है, बात करेंगे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में, फिल्म और एंटरटेनमेंट की दुनिया, बात होगी बॉलीवुड न्यूज की, मूवी रिव्यूज की, ओटीटी अपडेट्स की। साथ ही दोस्तों हम सुनेंगे कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्मी गीतों का सौगात। ठीक 10 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के शिलो दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए, जिसके बाद 10:10 पर प्रस्तुत होगा आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, जिसके बाद 11:10 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। और दोस्तों इसी के साथ ये थी हमारे आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार के लिए, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक।
2: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Subhendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The Legislature Party meeting was held in Kolkata in the presence of the Home Minister Amit Shah yesterday. Mr. Shah, who presided over the meeting, said that all the proposals were received in the favour of Subhendu Adhikari. Following his election as the BJP Legislature Party leader, Mr. Adhikari met West Bengal Governor R.N. Ravi and staked claim to form the first BJP-led government in the state. The BJP registered a historic victory in assembly elections, ending TMC's 15-year rule. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. Reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician once again met the governor yesterday and staked claim to form the government, saying that he has the majority. Meanwhile, the IUML headed by Professor Khader Mohideen has said that his party has not given a letter of support to TVK. In another surprising move, the meanwhile AMMK party leader TTV Dhinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamraj, the lone MLA elected from Mannagudi, to make AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy as the new Chief Minister. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met Guyanese Health Minister and discussed the progress of India-Guyana health ties. Dr. Jayashankar, who is on a three-nation visit to the Caribbean, met Health Minister Dr. Frank Anthony on a stopover at Georgetown in Guyana. Dr. Jayashankar was in Jamaica on the first leg of his tour, then went to Suriname and will be in Trinidad and Tobago for the final leg of his visit. U.S. President Donald Trump has announced a three-day ceasefire between Russia and Ukraine, noting that the temporary truce coincides with Russia's Victory Day celebrations commemorating the then-Soviet Union's role in the World War II. In a post on Truth Social, Mr. Trump said the ceasefire would take place from 9th to 11th of May and would include a suspension of all kinetic activity between the two countries. Mr. Trump stated that the request for the temporary truce was made directly by him and noted that the agreement will also include a prisoner exchange involving 1,000 prisoners from each side. The standoff over the Strait of Hormuz has intensified after Iran rejected a US-backed draft resolution at the United Nations Security Council, calling it flawed and politically motivated. Tehran argued that the proposal will legitimize unlawful actions rather than help resolve the conflict. Iran said the only path towards stability is ending the war, lifting the US maritime blockade on Iranian ports and restoring normal shipping through the Strait of Hormuz. The draft resolution, backed by the United States along with Bahrain, Saudi Arabia, UAE, Kuwait and Qatar, seeks to protect the freedom of navigation in one of the world's most critical energy corridors. Washington has accused Iran of threatening commercial shipping and destabilizing maritime traffic. Israel and Lebanon will resume negotiations with 2 days of intensive talks facilitated by the U.S. on 14th of May and 15th of May. U.S. State Department said delegations from both countries will meet in order to form a comprehensive peace and security agreement that substantively addresses the core concerns of both countries. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। श्रोतागणों, सुबह के इस पवित्र और सुहानी बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय है अब हमारा विशेष प्रस्तुति भक्ति गीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम गालो भाषा में समाचार, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे आज के सुबह सवेरे के कार्यक्रम की। दोस्तों, हमारा आज का ये विशेष रेडियो कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम बात करेंगे योगा और स्वास्थ्य स्वस्थ जीवन के बारे में। मैं हूँ आपकी आरजे मंच और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, योगा और हमारी सेहत का गहरा संबंध। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म बजता ए हसीनों से। चलिए सुनते हैं आहिस्ता आहिस्ता।

दोस्तों, आज का युग आधुनिकता का युग है। विज्ञान और तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन साथ ही हमारी जीवन शैली को बहुत बदल दिया। दिन भर मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन के सामने बैठना, शारीरिक मेहनत की कमी, अनियमित भोजन और तनाव भरी जिंदगी ने कई रोगों को जन्म दिया है। आज छोटी उम्र में ही लोग डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, डिप्रेशन और दिल की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय में योगा एक वरदान के रूप में हमारे सामने आता है। दोस्तों, योगा की शुरुआत हजारों साल पहले भारत में हुई थी। हमारे ऋषि मुनियों ने योगा के माध्यम से शरीर और मन को स्वस्थ रखने का संदेश दिया। योगा शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात शरीर, मन और आत्मा को एक साथ समन्वय बनाना। योगा सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये एक पूर्ण जीवन पद्धति है जो हमेशा हमें अनुशासन, संतुलन और सकारात्मक सोच सिखाती है। रोज सुबह ताजी हवा में योगा करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। प्राणायाम करने से फेफड़े मजबूत बनते हैं और शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी जैसे प्राणायाम मन को शांत करते हैं और तनाव दूर करते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण योगा आसनों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार। ये पूरे शरीर के लिए एक उत्तम व्यायाम माना जाता है। इससे शरीर लचीला बनता है और खून का संचार बेहतर होता है। वज्रासन, भोजन के बाद किए जाने वाला ये आसन पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। तदासन की बात करें तो शरीर का संतुलन बनाए रखने और लंबाई बढ़ाने में सहायक माना जाता है। दोस्तों, योगा का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। आज कई लोग चिंता, घबराहट और डिप्रेशन से परेशान है। रोजाना ध्यान और प्राणायाम करने से मन शांत होता है और सोच में सकारात्मकता आती है। विद्यालयों में भी

बच्चों को योग सिखाया जा रहा है, क्योंकि योग से एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में ध्यान लगता है। इसी तरह बुजुर्गों के लिए भी योगा शरीर को सक्रिय और तंदुरुस्त बनाए रखता है। दोस्तों, हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक बनाना है और आज दुनिया भर के लोग योग को अपना रहे हैं और भारत की इस प्राचीन परंपरा को सम्मान कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, योगा हमेशा सही तरीके और नियमित रूप से करना चाहिए। शुरुआत में किसी परीक्षित योग गुरु की सलाह लेना फायदेमंद होता है। योगा करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और शरीर की सीमा को समझना चाहिए। मेरे प्रिय श्रोतागणों, स्वास्थ्य शरीर की ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर शरीर और मन स्वस्थ हो तो जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। इसलिए हमें योग को अपनी रोजाना की आदत बनाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें, रोज करेंगे योगा, जीवन बनेगा निरोगी और आनंदमय। अंत में एक सुंदर संदेश के साथ में इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहती हूँ। जहाँ योग होता है, वहाँ रोगों का अंधेरा दूर होता है। योग अपनाइए, सेहत और सुख पाइए। दोस्तों, हमारे सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में, जहाँ हम रोज सुबह बात करते हैं योगा और स्वास्थ्य के बारे में, आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरे बातें पसंद आए होंगे, आप मेरे सुझाव को दिल से लेंगे, योग को अपने जिंदगी में शामिल करेंगे, उसे जिएंगे। हमारे इस कार्यक्रम के अंत में दोस्तों, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ फिल्म ओम शांति ओम से एक बहुत ही प्यारा गीत, सोनू निगम की आवाज में मैं अगर कहूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस गीत के बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम आपातानी भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहाँ हम बात करते हैं दिल से दिल तक। मैं हूँ आपकी RJ मंच, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि फिर हम मिलेंगे मॉर्निंग इंफोटेनमेंट प्रोग्राम में। बात होगी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और न्यूज के बारे में लोकल डेली से।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहती हूँ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ हम बात करते हैं दिल से दिल तक। अभी इससे पहले आप सुन रहे थे हमारे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम आपातानी भाषा में समाचार।

और अब वक्त है मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम का। दोस्तों, मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम के इस कार्यक्रम की चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत से, फिल्म लव आजकल से, आज दिन चढ़ेया।

दोस्तों, सुबह की ताजी हवा के साथ आप सुन रहे हैं हमारा मॉर्निंग इंटरटेनमेंट प्रोग्राम का ये खास सेगमेंट। मैं हूं आपकी आरजे मर्ज, और अब वक्त है आज के स्थानीय समाचार का, अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से चुनिंदा खबरें। सबसे पहली खबर शिक्षा जगत से है। राज्य के कई सरकारी कॉलेजेस में कॉमर्स स्ट्रीम में सीट्स भरने में परेशानी देखने को मिल रही है। ईटानगर के देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज और पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जैसे बड़े संस्थान भी पूरी सीट्स भर नहीं पा रहे हैं। देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज में कॉमर्स स्ट्रीम की 200 सीट्स हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में एडमिशन संख्या 167 और 185 तक ही पहुंच पाई। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में 200 सीट्स के मुकाबले सिर्फ 52 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। तेजू, बोमदिला, कामकी, देवाली और दोईमुख के कॉलेजेस की स्थिति भी कुछ खास उत्साहजनक नहीं है। कई कॉलेजेस में कॉमर्स डिपार्टमेंट में बहुत कम स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि बिना पूरी योजना और फिजिबिलिटी स्टडी के कॉमर्स स्ट्रीम शुरू करने से ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कॉमर्स स्ट्रीम की कमी के कारण स्टूडेंट्स की एक मजबूत चेन तैयार नहीं हो पा रही है। अब बात करते हैं, चलिए दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण और से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के दाइंग एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार कैमरा ट्रैप में ट्रैप के माध्यम से रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने बताया है कि हाल ही में किए गए सर्वे के दौरान टाइगर की तस्वीर कैमरा में कैप्चर हुई। डीएफओ केम्पी अते के अनुसार पहली बार टाइगर के मूवमेंट के संकेत मिलते रहते हैं, लेकिन अब पहली बार फोटोग्राफिक एविडेंस सामने आया है। सर्वे के दौरान क्रिटिकली एंडेंजर्ड चाइनीज पेंगोलिन और रेयर हिस्पिड हेयर की भी उपस्थिति दर्ज की गई है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने इस सेंचुरी के कंजर्वेशन एफर्ट्स की बड़ी सफलता बताया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग और हैबिटेट प्रोटेक्शन को और मजबूत करने की आश्वासन दिया है। अब चलते हैं चांगलांग डिस्ट्रिक्ट की ओर। विजयनगर में योबिन कम्युनिटी ने डिप्यूटी कमिश्नर से मांग की है कि सेंसस 2027 के दौरान समुदाय के सभी सदस्यों को सही रूप से स्केड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में दर्ज किया जाए। ऑल योबिन डेवलपमेंट सोसाइटी ने चिंता व्यक्त की है कि इन्यूमरेशन प्रोसेस में स्पष्टता की कमी के कारण लोगों में आशंका और उलझन का माहौल है। समुदाय का कहना है कि पहले के सभी सेंसस रिकॉर्ड्स में योबिन कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में दर्ज किया गया था और इस बार भी वही प्रक्रिया सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही विजयनगर सर्कल के 10 गांवों के प्रतिनिधियों ने भी प्रशासन से अपील की है कि उनके गांव की गणना विजयनगर के अंतर्गत ही की जाए, देवन एरिया के तहत नहीं। और अब एक अन्य महत्वपूर्ण खबर अंजाव डिस्ट्रिक्ट से। नुकुम वेलफेयर सोसाइटी ने प्रपोज किया 1200 मेगावाट कलाई 2 हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के विरुद्ध आपत्ति जताई हुई। सोसाइटी ने लैंड सर्वे और एक्विजिशन प्रोसेस को तुरंत रोकने की मांग की है। संगठन का कहना है

की प्रोजेक्ट लोहित रिवर बेसिन के इकोलॉजिकल बैलेंस को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने एनवायरनमेंट क्लियरेंस, पब्लिक कंसल्टेशन और रिहैबिलिटेशन प्लान्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी का भी आरोप लगाया है। सोसाइटी ने कहा कि बिना पूरी जानकारी और कानूनी प्रक्रिया के सर्वे और एक्विजिशन आगे बढ़ाना उचित नहीं है। जरूरत पड़ने पर समुदाय कानूनी रास्ता भी अपना सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ प्रमुख स्थानीय समाचार। हम थोड़ी देर में फिर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मॉर्निंग एंटरटेनमेंट के इस कार्यक्रम में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाना चाहती हूँ, वो है फिल्म तशन से। चलिए दोस्तों, उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में सुनते हैं फलक तक।

दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए मॉर्निंग इंफोटेनमेंट के इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं फिल्म दिल तो बच्चा है जी से एक प्यारा सा गीत अभी कुछ दिनों से।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा प्रिय सुबह का कार्यक्रम सदाबहार। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे मंज, और अब वक्त है एक आज के मौसम की जानकारी का। आज ईटानगर और आसपास के इलाकों में मौसम रहेगा पार्टली सनी, यानी हल्का धूप और बादलों का संगम देखने को मिलेगा। आज का अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की अनुमान है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं के बाद तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा उत्तर पूर्वी दिशा से लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एयर क्वालिटी फिलहाल फेयर कैटेगरी में है, यानी अधिकतर लोगों के लिए सामान्य रूप से ठीक है। आज दिन भर बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार रविवार रात देर से गरज चमक के साथ आंधी और बारिश हो सकती है। अगले कुछ दिनों में अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, इसीलिए सफर पर निकलते वक्त छाता या रेनकोट साथ रखना ना भूले। और दोस्तों, जब बात बारिश, बादलों और प्रकृति की हो तो हमें अपने पर्यावरण की याद जरूर आती है। आगे हम बात करेंगे

हमारी प्रकृति, हमारे पेड़ पौधे, नदी जंगल, पशु पक्षियों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक और प्यारा सा गीत फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से, शान की आवाज में। दोस्तों चलिए सुनते हैं दिल दी नजर।

दोस्तों, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हरी भरी पहाड़ियां, नदियां, जंगल, पक्षियों की आवाज और साफ हवा, ये सब हमारे जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाती है। अरुणाचल प्रदेश को प्रकृति ने खुलकर अपना वरदान दिया है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण, जंगल काटने और प्लास्टिक के अधिक इस्तेमाल से हमारा पर्यावरण धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, धरती माँ हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है, पानी, हवा, भोजन और जीवन। लेकिन क्या हम भी अपनी धरती के लिए कुछ करते हैं? आज जरूरत है कि हम सब मिलकर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को बचाने का संकल्प लें। छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। पेड़ लगाइए और उनकी देखभाल कीजिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए, नदियों और जंगलों को गंदा होने से बचाइए, पानी और बिजली की बचत कीजिए, और सबसे जरूरी, प्रकृति के प्रति अपने बच्चों में प्रेम जगाइए। याद रखिए, जब प्रकृति सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत मौसम में थोड़ा वक्त प्रकृति के साथ बिताइए। सुबह की ताजी हवा का आनंद लीजिए, पक्षियों की आवाज सुनिए और धरती के प्रति अपना कर्तव्य समझिए। इसी सुंदर संदेश के साथ दोस्तों, हमारा सदाबहार का कार्यक्रम आज के लिए इतना ही। आप मुस्कुराते रहिए, प्रकृति से जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम बात करते हैं दोस्तों दिल से दिल तक। अब हमारे सदाबहार के इस कार्यक्रम के अंत में दोस्तों, मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ आप सभी को, फिल्म ब्रह्मास्त्र से अरिजीत सिंह की आवाज में, रसिया। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस गीत का आनंद ले, मैं आपको बता दूं कि इस गीत के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज के लिए, जिसके बाद आप रुखसत होंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, क्योंकि हम बात करते हैं दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है।

0: दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas, or Human Evolution, which was 144 episodes, broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण

0: हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करना चाहती हूं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, अब इससे पहले आप बने हुए थे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज के लिए। अब आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रेडियो कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। मैं हूं आपकी आरजे मांझ और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। विषय है मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले चलिए आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए से इस फिल्म का टाइटल ट्रैक।

0: For more entertainment, log on and subscribe.
1: दोस्तों, अक्सर हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। बुखार हो, दर्द हो या कोई बीमारी हो, हम तुरंत इलाज करवाते हैं। लेकिन जब बात मन की होती है तो हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सच ये है कि स्वस्थ जीवन के लिए शरीर के साथ साथ मन का स्वास्थ्य होना भी उतना ही जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ बीमारी ना होना नहीं है, इसका मतलब है अपने भावों यानी अपनी फीलिंग्स को समझना, तनाव को संभालना यानी टेंशन्स को संभालना, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना और जीवन की चुनौतियों को सामना सकारात्मक सोच के साथ कर पाना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग बहुत सारे दबाव में का सामना करते हैं। पढ़ाई का प्रेशर, नौकरी की चिंता, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक परेशानियां, सोशल मीडिया का प्रभाव और अकेलापन, ये सब धीरे धीरे मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं। कई बार लोग उदासी, घबराहट, डर, नींद की कमी या हर वक्त थकान महसूस करते हैं। कुछ लोग अपनी बात किसी से कह नहीं पाते और चुपचाप अंदर ही संघर्ष करते रहते हैं। ये स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रही तो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे गंभीर समस्याओं का रूप ले सकती है। हमें ये समझना होगा कि मानसिक परेशानी कोई कमजोरी नहीं है। जैसे शरीर बीमार हो सकता है, वैसे ही मन भी थक सकता है। और जैसे शरीर को इलाज और आराम की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी सहारा, संवाद और देखभाल की जरूरी होती है। हम आगे बात करेंगे कि इस जरूरत को कैसे पूरा करें, अपने मानसिक संतुलन को कैसे बनाए रखें। लेकिन उससे पहले चलिए एक और गीत का आनंद लेते हैं। दोस्तों, फिल्म आजा नचले से राहत फतेह अली खान की आवाज में सुनते हैं ओरे पिया।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे और बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। और इससे पहले हमने आपके साथ शेयर किया कि मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य हमें इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें दुनिया से जोड़ती है। हमारा दिमाग, जो हमारा माइंड है, वही जोड़ता है हमें लोगों से, हमारे एनवायरनमेंट से। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें, इसे सहारा कैसे दें। सबसे पहला कदम है बात करना। अगर आप परेशान हैं, उदास हैं या मन बोझ से भरा लग रहा है, तो अपने किसी विश्वसनीय दोस्त, परिवार के सदस्य या काउंसलर से बात कीजिए। अपनी भावनाओं को दबाइए मत। कभी कभी सिर्फ किसी का ध्यान से सुन लेना भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ सरल आदतें अपनाई जा सकती है, जैसे कि रोज थोड़ा व्यायाम या योग करना। पूरी नींद लेना बहुत ही जरूरी है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। पौष्टिक भोजन जरूरी है। मोबाइल और सोशल मीडिया का संतुलित इस्तेमाल करना। अपने लिए वक्त निकालना और उन कामों में मन लगा के रखना जो आपको खुशी देते हैं, जैसे संगीत अगर आपको गीत पसंद है, किताबें अगर आप एक बुक वर्म है, या गार्डनिंग या प्रकृति के साथ समय बिताना। दोस्तों, हमें दूसरों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। कई लोग मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूट रहे होते हैं, इसलिए किसी का मजाक उड़ाने के बजाय उसकी बात सुनिए, समझिए और जरूरत पड़ने पर उसका हौसला बढ़ाइए। माता-पिता और शिक्षकों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों और युवाओं पर अनावश्यक दबाव ना डालें, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दें और उनके जज्बातों को समझें। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। आज दुनिया भर में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। हमें भी अपने समाज में इस विषय पर खुलकर बात करनी होगी, ताकि लोग बिना डर और शर्म के मदद ले सके। अंत में दोस्तों, मैं बस इतना ही कहूंगी, खुश रहना सिर्फ मुस्कुराने का नाम नहीं, बल्कि अपने मन को समझने और संभालने का नाम है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मन स्वस्थ रहेगा तभी जीवन सुंदर लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम बात करते हैं दोस्तों दिल से दिल तक। आशा करती हूँ दोस्तों, आज का मेरा ये मेंटल हेल्थ के ऊपर आपसे बात करना आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमें जरूर फीडबैक दीजिए, और ऐसे ही और बेहतरीन कार्यक्रमों के लिए आप ट्यून इन करते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ। अब दोस्तों, आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आर एन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जाँच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय को सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं लगातार 4थी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में गुरुवार तक लू चल सकती है। मौसम विभाग ने कल तक देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Subhendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal this morning. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata at 10 a.m. Governor R. N. Ravi will administer the oath of office and secrecy to the Chief Minister and members of the new cabinet. The oath-taking ceremony is expected to draw lakhs of party supporters, political leaders and dignitaries from across the country. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Shah, Defense Minister Rajnath Singh, along with several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states will attend the event. The ceremony coincides with the 25th of Baishakh, the birth ceremony of Rabindranath Tagore, giving the event added cultural and symbolic significance. Elaborate security arrangements have been put in place across central Kolkata, with thousands of police personnel deployed to ensure smooth conduct of the program. Union Home Minister Amit Shah has said that the BJP government in West Bengal will secure India's borders and plug biggest hole in national security. In his address to the newly elected West Bengal BJP MLAs in Kolkata yesterday, Mr. Shah said the BJP's victory is not about the expansion of our organization or validation of ideology. It is about fixing the biggest hole in the country's national security.
4: We now have a government in Tripura, we have a government in Assam, we have a government in Bengal too. Infiltration will be impossible, cow smuggling will be impossible. And with determination, the Bengal government and the government of India will transform this border into an impenetrable fortress of national security.
3: In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. IUML, headed by Professor Khader Mohideen, has said that his party has not given a letter of support to TVK. In another surprise move, AMMK party leader TTV Dhinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamaraj, the lone MLA elected from Mannargudi, to make AIADMK General Secretary Eddapadi Palaniswamy as the chief minister. The government has appointed Lieutenant General N.S. Raja Subramani as the next Chief of Defence Staff, CDS. Ministry of Defence said that Lieutenant General Subramani will also serve as Secretary, Department of Military Affairs, with effect from the date of assumption of charge and until further orders. He will assume office after General Anil Chauhan completes his tenure on 30th of this month. The government has appointed Vice Admiral Krishna Swaminathan as the next Chief of the Naval Staff. Ministry of Defence said that Vice Admiral Swaminathan is currently serving as the Flag Officer Commanding-in-Chief of the Western Naval Command. He will succeed Admiral Dinesh Kumar Tripathi, who retires on 31st of this month. National Legal Services Authority, NALSA, will organize the second National Lok Adalat of 2026 across the country today. Talking to Akashwani News Member Secretary, NALSA, Sanjeev Pandey said that the initiative aims to provide amicable settlement of disputes and reduce the burden on courts through participatory and people-centric mechanisms. He said a wide range of disputes are taken up during the Lok Adalat, including criminal compoundable cases, check dishonor matters and bank recovery disputes. U.S. President Donald Trump has announced a three-day ceasefire between Russia and Ukraine, noting that the temporary truce coincides with Russia's Victory Day celebrations commemorating the then Soviet Union's role in World War II. In IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur today. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at the Arun Jaitley Stadium in Delhi. And that is the end of this news bulletin.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। अब वक्त है हमारे कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। दोस्तों आज के फिल्मी गपशप के इस कार्यक्रम में सबसे पहला जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है एक बहुत ही प्यारा सा एल्बम फिल्म ओ माय गॉड का। इस फिल्म में गीत है जैसे कि डोन वरी, मेरे निशान, तू ही तू, गो गो गोविंदा, हरी बोल, ऐसे गीत है जो मुझे काफी पसंद है, मैं काफी एंजॉय करती हूँ। इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर है हिमेश रेशमिया। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लग जाते हैं इस फिल्म का एक नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले पे। आशा करती हूँ कि आप इस रिले का आनंद लेंगे दोस्तों।

दोस्तों, फिल्मी गपशप में हमने अभी सुना फिल्म ओ माय गॉड का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले। अब चलिए आपको ले चलते हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की चटपटी खबरों की ओर। मैं हूं आपकी आरजे मंज, और चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्मी दुनिया की हलचल के साथ। सबसे पहली खबर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा से जुड़ी हुई है। कपिल शर्मा का नाम टीवी कॉमेडी की दुनिया में एक बड़ा नाम माना जाता है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, द कपिल शर्मा शो और ओटीटी पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के जरिए उन्होंने घर घर में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन दोस्तों, जब बात फिल्मों की आती है तो कपिल शर्मा का सफर उतना आसान नहीं रहा। उनकी नई फिल्म दादी की शादी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन शुरुआती बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने मेकर्स को थोड़ा टेंशन जरूर दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारत में लगभग 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया है, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 72 लाख रुपए बताया जा रहा है। फिल्म का बजट करीब 20 करोड़ रुपए माना जा रहा है, और इसी वजह से इंडस्ट्री में इसकी ओपनिंग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। फिल्म का डायरेक्शन आशीष आर मोहन ने किया है, और इसमें कपिल शर्मा के साथ नजर आ रही है वेटरन एक्ट्रेस नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी, जो 45 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू कर रही है। फिल्म में साउथ सुपरस्टार शरद कुमार भी अहम भूमिका में है। अब देखना होगा कि वीकेंड पर फिल्म ऑडियंस को थिएटर्स तक खींच पाती है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल की, जो एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स को लेकर सुर्खियों में है। गदर 2 की सफलता के बाद अमीषा पटेल लगातार हेडलाइंस में बनी हुई है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ट्वीट्स शेयर किए, जिसमें उन्होंने आज की यंग एक्ट्रेसेस और पीआर कल्चर पर तंज कसा। अमीषा ने लिखा कि कुछ एक्ट्रेसेस जिन्होंने अब तक 200 करोड़ क्लब की एक भी फिल्म नहीं दी, वो अपनी पीआर टीम के जरिए खुद को नंबर 1 और नंबर 2

करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये 2026 है, 2000 नहीं। और आज के दौर में 100 करोड़ कलेक्शन को बहुत बड़ा बेंचमार्क नहीं माना जाता। साथ ही उन्होंने फैंस को गदर 3 के को लेकर भी हिंट दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस का एक्साइटमेंट और बढ़ गया। और दोस्तों चलिए अब फिल्मी गपशप में हम आगे और बात करेंगे बॉलीवुड की दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से गॉसिप घूम रहे हैं मुंबई की फिल्मी गलियों में, हम सब बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए एक और गीत सुनते हैं शान और श्रेया की आवाज में, क्षमा कीजिए, शान और सुनिधि चौहान की आवाज में सुनते हैं फिल्म तारा रणपम से हे शोना।

दोस्तों आप है हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हमारा खास सेगमेंट फिल्मी गपशप। दोस्तों चलिए अब एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करते हैं जिन्होंने स्ट्रगल, रिजेक्शन और फेलियर्स को का सामना करके साउथ सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की, जो आज अपना 38th बर्थडे मना रहे हैं। आज विजय देवरकोंडा लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं, लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरी के पीछे काफी संघर्ष छुपा हुआ है। हैदराबाद में एक साधारण तेलुगु परिवार में जन्मे विजय बचपन से ही एक्टिंग और फिल्म्स की दुनिया की तरफ आकर्षित थे। उनके पिता गोवर्धन राव टेलीविजन सीरियल से जुड़े हुए थे, जबकि माँ माधवी घर संभालती थी। परिवार चाहता था कि विजय पढ़ लिख कर एक सुरक्षित नौकरी करे, लेकिन विजय का सपना था एक्टर बनना। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पुत्तपार्थी के बोर्डिंग स्कूल में की और बाद में हैदराबाद से ग्रेजुएशन पूरा किया। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद उनका दिल सिर्फ एक्टिंग में लगता था। साल 2011 में विजय ने फिल्म नुविला से एक्टिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास सफल नहीं हो पाई। इसके बाद वो लाइफ इज ब्यूटीफुल में नजर आए, लेकिन ये फिल्म भी उन्हें वो पहचान नहीं दिला सकी जिसकी उन्हें तलाश थी। लगातार दो फिल्मों में के फ्लॉप होने के बाद विजय को करीब 2 साल तक कोई बड़ा काम नहीं मिला। वो घर पर खाली बैठे रहे। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। परिवार भी परेशान होने लगा था। घर वाले उन्हें एक्टिंग छोड़कर दूसरा करियर चुनने की सलाह देने लगे। कहा जाता है कि उनकी बहन उन्हें MBA की फॉर्म्स तक भेजा करती थी, ताकि वो एक्टिंग की दुनिया से बाहर निकलकर एक स्टेबल करियर की तरफ ध्यान दे। लेकिन दोस्तों विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद के लिए एक डेडलाइन भी तय की थी। अगर एक निश्चित उम्र तक एक्टिंग में सफलता नहीं मिली तो वो इस सपने को छोड़ देंगे। शायद वही प्रेशर और डर उनके अंदर और ज्यादा मेहनत करने की ताकत बन गया। और फिर आई वो फिल्म जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। फिल्म था अर्जुन रेड्डी। अगर आपको नहीं पता तो अर्जुन रेड्डी है ओरिजिनल फिल्म कबीर सिंह की, यानी कबीर सिंह है बॉलीवुड रेंडिशन ऑफ अर्जुन रेड्डी। कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। विजय देवरकोंडा की एक्टिंग, उनका एटीट्यूड और उनका इंटेंस कैरेक्टर यूथ के बीच बहुत पॉपुलर हो गया। फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। आज विजय सिर्फ साउथ सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक यूथ आइकॉन के रूप में देखे जाते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हौसला और मेहनत हो तो मुश्किल वक्त भी एक दिन सफलता की कहानी बन जाता है। तो दोस्तों सपने बड़े रखिए, मेहनत जारी रखिए और कभी हार मत मानिए। चलिए अब फिल्मी गपशप में आपको सुनाते हैं अगला गीत। सुनते हैं फिल्म लक बाय चांस से फरहान अख्तर और शंकर महादेवन की आवाज में सपनों से भरे नैना। जैसे विजय देवरकोंडा के नैन सपनों से भरे हुए थे, चलिए सुनते हैं ये गीत। और आप सभी श्रोताओं को मेरा तरफ से ये गाना, ये गीत मेरे तरफ से आप सभी को जो सपने देखते हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं।

0: दोस्तों, आज की फिल्मी गपशप में आखिरी खबर चलिए आपको सुनाते हैं देओल परिवार से। एक्टर बॉबी देओल एक बार फिर अपने नए और इंटेंस लुक को लेकर सुर्खियों में है। उनकी अपकमिंग फिल्म बंदर का टीजर रिलीज हो चुका है और टीजर आते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है। फिल्म का डायरेक्शन मशहूर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने किया है और टीजर में बॉबी देओल का बिल्कुल अलग अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। टीजर रिलीज होते ही सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि देओल फैमिली की भी बॉबी की तारीफ करते नहीं थक रहे। बड़े भाई सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बंदर का टीजर शेयर करते हुए एक खास मैसेज लिखा। सनी देओल ने प्यार भरे अंदाज में लिखा, लुकिंग सो गुड माई लॉर्ड बॉबी। बस फिर क्या, सोशल मीडिया पर लॉर्ड बॉबी ट्रेंड करने लगा और फैंस ने भी बॉबी देओल के नए अवतार को लेकर एक्साइटमेंट दिखानी शुरू कर दी। वही बॉबी के भतीजे और एक्टर करण देओल ने भी टीजर पर रिएक्शन दिया और अपने चाचा के एक्टिंग की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बॉबी देओल टीजर में कमाल लग रहे हैं। अब फैंस को इंतजार है फिल्म के ट्रेलर और रिलीज डेट का। तो दोस्तों, क्या आप भी एक्साइटेड हैं बॉबी देओल के नए अवतार को देखने के लिए? फिल्मी गपशप में आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार के लिए।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय

संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल की बात। और आप सभी को दिल से शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें ट्यून इन करने के लिए, क्योंकि आपके बिना हमारा प्रोग्राम, हमारा कार्यक्रम बिल्कुल ही खाली होगा, बिल्कुल अधूरा आपके बिना। जी हाँ, चलिए अब शुरू करते हैं हमारा रेडियो ऑन डिमांड का कार्यक्रम, रेडियो ऑन डिमांड, जहाँ बजते हैं आपके पसंदीदा गाने।

दिल तक। मैं हूं आपकी आरजे साथी मंच, और अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर सजाएंगे संगीत की महफिल। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो ऑन डिमांड, जहां हर गाना होता है खास, क्योंकि ये होता है आपके दिल की आवाज। तो सबसे पहले हमारे रेडियो ऑन डिमांड पर जो रिक्वेस्ट मैं लेने जा रही हूँ, वो आया है हमें हर्षित गोस्वामी जी की तरफ से। हर्षित गोस्वामी लिख रहे हैं बोखात आसाम से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें फिल्म, हमें गीत कुड़ीनू नचने दे विशाल ददलानी और सचिन जिगर की आवाज में। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर हर्षित गोस्वामी जी का रिक्वेस्ट सुनते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको भी ये गीत पसंद आएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी भी समय है, आप हमें अभी मैसेज कर सकते हैं और आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट हम जरूर लेंगे। नंबर है 9436887808, इस नंबर पर हमें तुरंत मैसेज कीजिए, हम उसे जरूर आपके लिए प्ले करेंगे। फिलहाल के लिए चलिए सुनते हैं हर्षित गोस्वामी जी का सॉन्ग रिक्वेस्ट, कुरीनू नचने दे।

0: सबका डेटा देश कमाल, जनगणना से जन कल्याण, आपका सहयोग देश दिशा।
1: अटेंशन रेसिडेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गेट रेडी टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट डिजिटल सेंसस।
2: द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज अनाउंस्ड द सेंसस 2027 फेज 1 हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस फर्स्ट डिजिटल सेंसस।
1: Self enumeration will be available from 16th April to 30th April 2026.
2: Census enumerators will visit every household from 1st May to 30th May 2026 for data collection.
1: Please provide

0: correct information and extend full cooperation to census enumerators for effective planning and development.
1: Janagana se Jan Kalyan, your participation matters.
2: Census 2027. Together we build a better Arunachal, a better future.
3: Janagana se Jan Kalyan.
4: चलिए दोस्तों, अब लेते हैं रेडियो ऑन डिमांड पर अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट. अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट हम लेने जा रहे हैं, लालुक आसाम से आया है ये रिक्वेस्ट. सत्यजीत जूतिया जी ने हमें रिक्वेस्ट भेजा है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का कोई भी गीत उन्हें सुनाने को. जी जरूर, हम आपको सुनाएंगे सत्यजीत जी. आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ट्यून्ड इन हैं, आप हमें सुन रहे हैं. मैं आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट अभी प्ले करने जा रही हूं, लेकिन उससे पहले अपने बाकी श्रोता दोस्तों को भी बताना चाहती हूं कि आप भी हमें सत्यजीत जी के तक जैसे सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उस सॉन्ग रिक्वेस्ट को हम अभी फुलफिल हमारे इस रेडियो ऑन डिमांड पर ही करेंगे. तो तुरंत अपने फोन उठाइए और लिख भेजिए हमें अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट, अपने डेडिकेशन. नंबर है 9436887808. तो चलिए अब सुनते हैं सत्यजीत जी का सॉन्ग रिक्वेस्ट. सत्यजीत जी, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से अखिल शशिदेव की आवाज में हम सफर.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। चलिए अब रेडियो ऑन डिमांड पर लेते हैं अगला रिक्वेस्ट। अगला रिक्वेस्ट आया है हमें जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंगतिपी और धोरमकिरी रोंगपी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं हमें सरियाजन कार्बी आंगलोंग आसाम से और वो डेडिकेट करना चाहते हैं ये गीत अपने फ्रेंड्स अमल बसुमतरी, बाइकोन मुंडा, रमेश पात्रो, रुनु पात्रो और सभी आप सभी अरुणाचल के श्रोता गणों को। थैंक यू सो मच आपके इस रिक्वेस्ट के लिए और आपके डेडिकेशन के लिए। हमारे ईटानगर और अरुणाचल के लिसनर्स के लिए डेडिकेट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट किया है डेडिकेटेड सॉन्ग फिल्म हेना से, मैं हूँ खुश रंग हेना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। तो चलिए सब मिलकर सुनते हैं उनके सॉन्ग रिक्वेस्ट और मैं आशा करती हूँ आप सब खुशल मंगल हैं, आप सब सेहतमंद हैं। ऐसे ही हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजते रहिए, हम बहुत ही खुश होते हैं आपके रिक्वेस्ट लेके। दोस्तों आप भी अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें भेजिए, अपने डेडिकेटेड मैसेजेस हमें लिखिए, हम उसे आपके लिए हमारे इस रेडियो ऑन डिमांड के कार्यक्रम में जरूर प्ले करेंगे, जरूर आपके मैसेज को पहुंचाएंगे आपके चाहने वालों के साथ। और अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो नंबर है 9436887808। तो बिना किसी देरी के अब चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म हेना से।

0: जनगणना से जन कल्याण सबका डेटा देश का मान जनगणना से जन कल्याण आपका सहयोग देश की शान अरुणाचल प्रदेश के प्रिय निवासियों तैयार हो जाइए पहली डिजिटल जनगणना में भाग लेने के लिए।
1: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जनगणना 2027 चरण एक मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना की घोषणा की है। यह है भारत की पहली डिजिटल जनगणना।
0: 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
1: 1 मई से 30 मई 2026 तक जनगणना प्रगणक डेटा संग्रह के लिए हर घर का दौरा करेंगे।
0: कृपया सही जानकारी प्रदान करें और जनगणना प्रगणकों का पूरा सहयोग करें ताकि प्रभावी योजना और विकास संभव हो सके।
1: जनगणना से जन कल्याण आपकी भागीदारी है जरूरी। जनगणना 2027 मिलकर बनाए एक बेहतर अरुणाचल एक बेहतर भविष्य। जनगणना से जन कल्याण।
2: दोस्तों चलिए रेडियो ऑन डिमांड पर हम लेते हैं अगला रिक्वेस्ट। अगला रिक्वेस्ट आया है हमें

क्षमा चाहती हूँ दोस्तों, मुझे मैसेजेस दिख नहीं रहे। कृपया मेरे साथ बने रहिए और मैं तुरंत ही आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट फुलफिल करूँगी। अच्छा जी, मिल गया मुझे मुझे मैसेज, और अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें आया है यासी जेम की तरफ से। लिख रहे हैं हमें यासी जेम, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म सैयारा का टाइटल ट्रैक। जी हाँ यासी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिक्वेस्ट एंड आई होप यू आर ट्यून्ड इन टू अरुण FM 103.1 MHz। चलिए हम लोग जल्द से यासी जी का सॉन्ग रिक्वेस्ट फुलफिल करते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म सैयारा का टाइटल ट्रैक सैयारा।

श्रोता दोस्तों, हमें अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट आ गया है विश्वनाथ से, आसाम। विश्वनाथ जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं आसाम से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म ओम शांति ओम का ये प्यारा सा गीत, मैं अगर कहूँ, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। तो चलिए सुनते हैं उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट, और आप भी हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट जरूर भेजिए। नंबर है 9436887808। आपके मैसेज का मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों।

दोस्तों, चलिए, हमें अगले लिसनर का मैसेज आ चुका है और लिख रहे हैं ईटानगर से आइरिस। आइरिस जी हमें ईटानगर से लिख रहे हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें गुरनजर और तनिष्का बाल की डुएट उनके एल्बम ओनली यू से गीत तू है। आइरिस जी, आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ट्यून्ड इन हैं, आप बने हुए हैं हमारे साथ, क्योंकि हम आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं और आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट हम फुलफिल करेंगे हमारे इस कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर। तो फिलहाल चलिए सुनते हैं आरएसजी का सॉन्ग रिक्वेस्ट।

श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। रेडियो ऑन डिमांड पर अगला रिक्वेस्ट आया है हमें दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु गोलू, कुसुमबाई बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे की तरफ से। सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा सभी साथ में सुन रहे हैं। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें फिल्म मोहरा से गीत कजरा ना कजरे की धार। चलिए सुनते हैं उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट और एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने पसंदीदा आर्टिस्ट को पसंदीदा सॉन्ग सुनना चाहते हैं रेडियो पर, हमें तुरंत मैसेज कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। इस नंबर को सेव कर लीजिए, नंबर है 9436887808। इस नंबर पर आप हमसे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के केंद्र में, और हम आपके रिक्वेस्ट को, आपके डेडिकेशंस को आपके लिए जरूर प्ले करेंगे। तो फिलहाल के लिए चलिए करते हैं उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरा।

दोस्तों चलिए रेडियो ऑन डिमांड पर आज लेते हैं आज का आखिरी सॉन्ग रिक्वेस्ट। हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है यासी जेम ने एक बार फिर से। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनके एक और फेवरेट गीत बजा दिया जाए, तो ऑब्वियसली मना तो नहीं करूंगी। यासी जी, यासी जेम जी, आशा करते हैं कि आप बने हुए हैं, आप ट्यून्ड इन हैं हमारे साथ। चलिए सुनते हैं उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें फाइंडिंग हर का फीमेल वर्जन। ये गीत मुझे भी काफी पसंद है, तो चलिए क्यों ना इस रेडियो ऑन डिमांड को एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ समाप्त करते हैं। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं यासी जी का सॉन्ग रिक्वेस्ट।

0: और दोस्तों, इसी के साथ हम अपने रेडियो ऑन डिमांड के कार्यक्रम की समाप्ति पर पहुंच चुके हैं और साथ ही हमारे प्रभातकालीन प्रसारण सभा की समाप्ति पर भी पहुंच चुके हैं। दोस्तों, मुझे यानी आपकी रेडियो साथी बिंदुम बिंदु मंच को दीजिए इजाजत। मैं आपको बता दूं कि आपको एक सुरेले सफर पर ले जाने के लिए हमारे अगले आरजे आरजे पूनम स्टूडियो पर पहुंच चुके हैं और आगे आपका साथ देंगी आरजे पूनम। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम को आप तक प्रस्तुत करने के लिए हमारे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी तामजंग एवं तकनीकी अभियंता तना आतुम। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपका दिन खुशल मंगल रहे, आप सपने देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे यानी आपकी आरजे मंच को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे किसी और वक्त। धन्यवाद।
1: बात पहुंची मिलते मिलते सनम,
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।
1: तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में पहुंच गए हैं। इससे पहले वो एक भव्य रोड शो में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हैं। इससे पहले कल श्री अधिकारी को पार्टी विधायक दल का नेता निर्विरोध चुना गया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त होगा। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, इससे पहले आप सुन रहे थे आपके चहेते आरजे मंच के साथ हमारी पहली प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को, और अब मैं आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत से मजेदार कार्यक्रमों को आपके लिए हमारी दूसरी प्रसारण सभा में। इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है फिल्मी लहर। तो चलिए इस बेहतरीन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन गीत के साथ, जो लिया गया है फिल्म पीके से, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने, और जिसके गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा। तो चलिए इस बेहतरीन गीत जिसके बोल हैं लव इज वेस्ट ऑफ टाइम का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथ ही आरजे पूनम के साथ।

श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर का। श्रोताओं दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमें जरूर लिख भेजिए, या फिर आप चाहते हैं कि हमारे किसी भी कार्यक्रम में किसी भी तरह का सुधार आए, या और एक्साइटमेंट चाहिए, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप लिखकर भेज सकते हैं। हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। आप हमें अपने सुझाव लिखकर भेजें इस नंबर पर 9436887808। तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आप हमें जरूर लिखेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ। इस बेहतरीन गीत को गाया है चित्रा ने, और ये लिया गया है फिल्म बॉम्बे से। इस बेहतरीन गीत के गीतकार हैं महबूब और संगीतकार हैं ए.आर. रहमान। तो चलिए, इस बेहतरीन गीत जिसके बोल हैं कहना है क्या का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं के साथ।

Şuradan dostum, abs. श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर का। तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी, ये याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं हमारे कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाया जाए, आप किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिए इस नंबर पर 9436887808 पर। एक बार फिर से मैं नंबर को दोहरा रही हूँ, 9436887808 पर। हम चाहते हैं कि आप हमें जरूर मैसेज कीजिए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप हमें हमारी तारीफों के पुल जरूर बांध सकते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो हमें जरूर लिख भेजिए, ताकि हम आपके अनुभव को और भी बेहतर बना सकें। जी हाँ श्रोताओं दोस्तों, हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं एक और गीत, जिसे लिया गया है फिल्म आजा नचले से। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान ने, और इसके गीतकार हैं जयदीप सैनी और संगीतकार है सलीम सुलेमान। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

Next, All Right by Kendrick Lamar.

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashwani Itanagar. This was your host Sam, signing off. Goodbye.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज. अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब. भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब.
2: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं. भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है. आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है. भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है. कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई. उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी. लेफ्टिनेंट जनरल एस एन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है. वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे. उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है. इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत है. उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है. वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का स्थान लेंगे. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं. वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं. हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया. 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र. विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है. आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है. सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है. ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है. 5 दिन के इस उत्सव

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं, दोस्तों, अभी आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम जो कि स्पेशली हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए। इस बेहतरीन कार्यक्रम का नाम है यादों की बारात। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन गीत के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। ये लिया गया है फिल्म हीर राजा से। उस जमाने में हर किसी ने इस गीत को कभी न कभी जरूर गुनगुनाया होगा। तो चलिए उन बीते हंसी पलों को करते हैं याद और खो जाते हैं उन यादों में। सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं।

श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम यादों की बारात का। तो चलिए इस बेहतरीन कार्यक्रम को, ये जो बेहतरीन कार्यक्रम है, ये समर्पित है हमारे वरिष्ठ साथियों को, जिनकी यादों में अब भी बसता है रेडियो का सुनहरा दौर। दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और आज का हमारा अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है। साल 1964 की खूबसूरत फिल्म दूर गगन की छांव में से लिया गया यह अमर गीत, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, जिसे अपनी जादुई आवाज दी है महान गायक, संगीतकार और अभिनेता किशोर कुमार ने। इस गीत की खास बात यह है कि दोस्तों, इसकी आवाज, संगीत और बोल तीनों ही किशोर कुमार साहब की देन है। यह गीत हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां न गम हो न आंसू, सिर्फ सुकून हो, प्यार हो और अपनापन। और शायद यही तो हर इंसान अपने जीवन में चाहता है। तो आइए थोड़ी देर के लिए जिंदगी की भाग दौड़ से दूर चलते हैं और यादों के उस खूबसूरत सफर पर। तो दोस्तों, पेश है ये खूबसूरत गीत दूर गगन की छांव में, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ।

वाह, क्या कमाल का गीत है दोस्तों। सच कहें तो ऐसे गीत वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और भी अनमोल बन जाते हैं। किशोर कुमार साहब की आवाज में एक अपनापन था, एक मुस्कुराहट थी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर यह गीत सुनकर आपको भी कोई पुरानी याद ताजा हुई हो, कोई अपना याद आया हो, तो हमें जरूर लिख दीजिए। फिलहाल इसी के साथ यादों की बारात कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत किशोर कुमार की आवाज में, जो लिया गया है फिल्म ब्लैकमेल से। तो चलिए इस बेहतरीन गीत जिसके बोल हैं पल पल दिल के पास का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर अपनी रेडियो साथी RJ पूनम के साथ।

श्रोताओं, दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम यादों की बारात का, सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, जो है गीत माला, जो कि हमारे फौजी भाइयों को समर्पित है।

तो चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं इस बेहतरीन कार्यक्रम का पहला गीत, और साथ ही साथ हम हमारे उन सभी फौजी भाइयों बहनों को सलाम करना चाहते हैं जो हमारी रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस बेहतरीन गीत को आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज में। गीत के बोल हैं पिया ओ रे पिया। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद ले रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: I love my Eco, because it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, because we can bring all our friends.
0: We love our Eco,
1: because it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथ ही आरजे पूनम के साथ, और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत माला का, जो कि हमारे फौजी भाइयों को समर्पित है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे जो फौजी भाई हैं वो कैसे इतनी कड़कती धूप में, जब हम 10 मिनट के लिए भी बाहर जाना हमारे लिए भारी हो जाता है 40-45 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन वो राजस्थान के अंदर उन मिट्टी के टीलों के अंदर उनके पैर रहते हैं और वो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को झेलते हुए हमेशा हमारी रक्षा में खड़े रहते हैं। और ऐसे ही जब सर्दियां होती हैं तो सियाचिन की पहाड़ियां हों या बर्फ के से ढकी हुई पहाड़ियां या तेज हवाएं और तूफान, लेकिन हमारे फौजी भाई हमेशा सरहद पर डट के खड़े रहते हैं और हमेशा हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो उन सभी को हमारी तरफ से एक सलाम और एक हमारी तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी श्रोताओं की तरफ से भी मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो कितनी अच्छी तरह से हमारी हर वक्त हिफाजत करते हैं। हम सोते हैं, जागते हैं, लेकिन वो हर वक्त हमारी सुरक्षा में डटे रहते हैं। तो चलिए उन्हीं फौजी भाइयों के लिए एक और बेहतरीन गीत मैं पेश करती हूँ, जो कि लिया गया है फिल्म गदर 2 से। इस बेहतरीन गीत के बोल हैं ऊर्जा काले कामा। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपने फौजी भाइयों के साथ।

0: I love my Eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
0: We love our Eco,
1: cause it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं कार्यक्रम गीत माला में, जो कि हमारे फौजी भाइयों को समर्पित है, और आप इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों, एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको एक और बेहतरीन गीत सुनाते हैं, जो कि हमारे फौजी भाइयों को समर्पित है। इस बेहतरीन गीत को गाया है जुबिन नौटियाल और आशीष कौर ने, और इसके गीतकार हैं तनिष्क बागची, गीतकार और संगीतकार। तो चलिए, इस बेहतरीन गीत जिसको लिया गया है फिल्म शेरशाह से, को सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, राता लंबियां लंबियां।

0: बिल्कुल नहीं, बात करना उसके बारे में कुछ नहीं। हमारा आधा लाइफ निकल गया उसका पीछा करते करते। बर्फी नहीं होता ना तो हम
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत माला, जो कि हमारे फौजी भाइयों को समर्पित था। ये आकाशवाणी ईटानगर का RUN FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए यह शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

दोस्तों अब समय हो चला है आपको एक और बेहतरीन कार्यक्रम सुनाने का जिसका नाम है हिंदी क्लासिक म्यूजिक। तो चलिए इस बेहतरीन कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत जो लिया गया है फिल्म आर पार से शमशेद बेगम की आवाज में। गीत के बोल हैं कभी आर कभी पार। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद देते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपने सभी श्रोताओं के साथ।

श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। अभी आप ये जो बेहतरीन गीत सुन रहे थे, ये लिया गया है फिल्म रॉकी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, जो लिया गया है फिल्म इज्जत से आशा भोसले की आवाज में। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद देते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं के साथ।

0: Stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। तो चलिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। इस बेहतरीन गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और इस गीत के बोल हैं अजीब दास्तां है ये। तो चलिए, इस बेहतरीन गीत का आनंद देते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ।

श्रोतम दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों, अभी हमने बहुत सारे पुराने गीत सुने। दोस्तों, यही तो खासियत होती है पुराने गीतों की, जितना सुनो उतने ही अपने लगते हैं। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा गीत बसता है जो आपको आपकी पुरानी यादों में ले जाता है, तो आप हमें जरूर लिख के बता सकते हैं। और आज के सफर में हमने बहुत सारे पुराने गीतों का आनंद लिया, और इस बेहतरीन गीतों के जरिए हम हमारे पुराने उस सफर में जा चुके हैं, जहां किशोर कुमार की आवाज और लता मंगेशकर का वो दौर था। उस वक्त क्या बेहतरीन गीत हुआ करते थे। तो दोस्तों, अभी जो आपने गीत सुना वो शमशेद बेगम की आवाज में बहार फिल्म से लिया गया था, और ये उस वक्त का बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय गीत था। तो चलिए, अब आपको ले चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सब बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 में।

श्रोता दोस्तों, अब आप कुछ सुनाते हैं कुछ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो चलिए पहला गीत आपको सुनाते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से, जसपिंदर नरूला की आवाज में। तो दोस्तों, ये गीत कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन गीत है, और इसमें इस फिल्म में जो प्रीति जिंटा का किरदार है वो अपने आप में ही बहुत खास है। तो उस वक्त की उनकी भावनाओं को समझते हुए हम इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं, जिसके बोल हैं मेहंदी मेहंदी, सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का।

0: अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल R.N. रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटना

0: कार्यक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजना और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
4: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड न्यूज और दोपहर समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करती हूं। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम और तैयार हूं आपके लिए एक दिलचस्प सफर लेकर, जिसे हम कहते हैं हिट्स ऑफ 90s। हिट्स ऑफ 90s में हम आपको सुनाएंगे 90s के दशक के कुछ सुनहरे गाने। तो चलिए बीते पलों को करते हैं याद इन बेहतरीन गीतों के साथ। तो इस कार्यक्रम का पहला गीत आपको मैं सुनाना चाहूंगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का चुरा के दिल मेरा। इस बेहतरीन गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक के। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का। तो चलिए आपको एक और बेहतरीन गीत सुनाते हैं। उस वक्त का बहुत ही लोकप्रिय गीत है ये, जिसे लिया गया है फिल्म विजय पथ से। इस बेहतरीन गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इसके बोल हैं राह में उनसे मुलाकात हो गई। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोताओं दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे थे इस बेहतरीन गीत का जो गाया है कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी ने। इस बेहतरीन गीत को लिया है फूल और अंगार फिल्म से। तो दोस्तों, इस 90s हिट्स ऑफ 90s में आज इतना ही। तो दोस्तों, आज का ये म्यूजिकल सफर कुछ समय के लिए यही होता है खत्म। हिट्स ऑफ 90s में आपको सुनाए वो सारे गीत जो एक जमाने में दिल के सुर बन गए थे। ये मेरे लिए भी एक यादगार अनुभव रहा, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि आगे भी आपके लिए है कुछ खास। आप सभी बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे थाई कामती श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

श्रोता दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए अगला कार्यक्रम जिसका नाम है बॉलीवुड अपडेट कुछ हिंदी गीतों के साथ। तो चलिए लेते हैं आज की पहली बॉलीवुड अपडेट। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के घर से एक दिलचस्प खबर। सोहेल खान और उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेहा को तलाक के 4 साल बाद एक साथ स्पॉट किया गया। फैंस के बीच फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दोनों के बीच दोस्ती

करना है, चैप्टर शुरू हो रहा है या ये सिर्फ एक कैजुअल मुलाकात थी। बॉलीवुड में रिश्तों का ट्विस्ट कब आ जाए कोई नहीं जानता। अगली खबर है ओटीटी लवर्स के लिए, अगर वीकेंड पे बिंज वॉच का प्लान कर रहे हो तो G5 और सोनी लिव की कुछ धमाकेदार वेब सीरीज ट्रेंड कर रही है। बिच्छू का खेल, छल कपट और बकेती जैसी सीरीज का ऑडियंस खूब पसंद कर रही है। IMDb रेटिंग भी शानदार मिल रही है, मतलब पॉपकॉर्न तैयार रखो और एंटरटेनमेंट मोड ऑन कर दो। अगली खबर है बॉक्स ऑफिस से आ रही है एक धमाकेदार एंट्री, कृष्णावतारम के दूसरे दिन कलेक्शन में बड़ा जंप लिया है। फिल्म को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और इंडस्ट्री में अभी से तुलना शुरू हो गई आने वाले प्रोजेक्ट्स के साथ, जिनमें भूत बंगला भी शामिल है। अब देखना होगा वीकेंड पे कौन मारेगा बाजी। अगली खबर है तनिजा मुखर्जी ने अपनी पर्सनल स्ट्रगल शेयर करते हुए एक इमोशनल खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें वजन कम करने के दबाव का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बेलेंस तक हो गया। बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे कितना प्रेशर होता है, ये कहानियां वही याद दिलाती है दोस्तों। अगली खबर है परमीत सेठी ने अपनी फैमिली को की एक भावुक कहानी शेयर की। उन्होंने बताया कि बंटवारे के दौरान उनकी माँ सुशील सेठी को गोली लगी थी। ये कहानी सिर्फ एक फैमिली मेमोरी नहीं बल्कि एक इतिहास के दर्द को भी याद दिलाती है। अगली खबर है अर्जुन कपूर ने अपनी माँ मोना कपूर को याद करते हुए इमोशनल बातें शेयर की। उन्होंने बताया कि बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिश्ते की वजह से उनकी माँ काफी टूट गई थी और बहुत रोई थी। फैंस भी अर्जुन की ईमानदारी और इमोशंस को सलाम करते हैं। तो दोस्तों अब आपको सुनाते हैं एक बेहतरीन गीत, जिसके बोल हैं गोरे गोरे मुखड़े पे काला चश्मा। ये लिया गया है फिल्म सुहाग से, जिसे गाया है अलका याग्निक, उदित नारायण, साधना सरगम, SP बाल सुब्रमण्यम, चित्रा सिंह और बेला सुलाखे ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: दोस्तों आप सभी बने हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट का। अब समय हो चला है, अब आप सुनेंगे वांचो श्रोताओं के समाचार।
1: दिल तक बात पहुंचे।
2: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ अनि मेलेट मानी कु तारीख हूनीबार इरुमा केम वांचो साइ का हो वांग वांगना हो वांगे का हो पाई फाले मंचुई जामी खमे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स बोमचु मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हर्ष मल्होत्रा मानी पोंग वांग लेके आंग न्यू न्यू हाट पकमा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट वांग ले लिकामाली मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ची मखांगे कोके गुंजान मखांगे रिंगके कार्डू ताइपुडिया डिस्ट्रिक्ट हिंगहम हमरन तो हुमे अंगुले हया मा मिस्टर मल्होत्रा हया बोमा लिकाबली मवै जल जीवन मिशन खामा रिंके लिंकटी प्रोजेक्ट अंतोले सिली टिंग अंके पीएम श्री अपर प्राइमरी स्कूल तोले हुवांग चुंगुले हायमा मिनिस्टर मास्टर बुफाई नाउ समे होम मोलम सत लंबा मा चू न सिंग लांग लाइन नोट खामा टिंग खों आखा मोलम सत लंबा मा चू अपोनो ल को कोला काले मिनिस्टर लिकाबाली मखांग ए स्टेट रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट ची मखांग रिंग के पीएमजीएस वाई लम तो हुमेले चू अहमले मिस्टर सुवेंदु अधिकारी आंग अनि वेस्ट बेंगल तो कोलकाता आंग के ब्रिगेड परेड ग्राउंड मा पोंगवांग लेके बीजेपी चीफ मिनिस्टर हो ले चावसत ले हायम चाउ चीफ मिनिस्टर फाइटम ले कैबिनेट मिनिस्टर बुचू मिहक अगा आंग सत ले

श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं इस बेहतरीन गीत का, जो लिया गया है फिल्म ओम शांति ओम से।

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे ईदो मिशमी श्रोताओं के समाचार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है ईदो मिशमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: एचा आकाशवाणी ईटानगर चुआला पुची एक मानुलिनी एतानी ईद मिशमी आहोला के जी दरगालम्बो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट दोने हाईवेज मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा ने आनी निगबने बुनी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट मा मेलो इगमु महो लिकाबले तिकोचे सेंटर में आम एठोगे ने आज तेला कार्दू टाइपोटिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तामाको ओम आयपहा बदा आहोगा आदुमा अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली डिप्टी स्पीकर कार्दू निक्योर एडीसी मकर रिबा इकिशा गवर्नमेंट आजबा बोलंबो दोने पंचायत मेंबर आनंबो उखोगिगा बदा ला होगा आप यूनियन मिनिस्टर में जल जीवन मिशन माची छे प्रचा सिले अतिकोचे पीएम श्री अपर प्राइमरी स्कूल दीपा सेरेन दोने पान ब्रम्बो ओल डे का अतिकोचे पाम ब्राली लिमुमा अथु ऐ दोने लिकाबली अतिकोचे पीएम जे एस वाई आय छे मामा ठूके ने अथु ऐ बदा आहोगा वेस्ट बंगाल मा बीजेपी में मा गवर्नमेंट अजिगा मा सुविंदो अधिकारी चीची मिनिस्टर अजिगा ने लासे अथगा बदा आहोगा रविंद्र नाथ टैगोर आला इनी एनागा माचिनी अधिकारी में ओना कोलकाता माचे ब्रिगेड परेड ग्राउंड मने लासे हाही बदा आहोगा इंस्पेक्टर कृष्णेंदु देव में छिनेला नाहलगन पुलिस में बुनी पोलो कॉलोनी मने विजय परान लाएगा असुनु इमुगे आयमुगा ड्रग अमय अशुमने रोते ने आचा तो चने असुनु लाख पावे हीरोइन नित्र जेपम तमाब्रा इंजेक्शन ठन वाया सीरेंस तो ने एजन बाखियान माओ ताहो पाउसा रोते का लता ला होगा ने आरु नहलगन पुलिस स्टेशन मा एनडीपीएस एक्ट अचो को मने केस अजित ने अशु सुपगा लता ला होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सुही गने अरुणाचल प्रदेश मा खा गा प्राइवेट स्कूल मा मा गादा बु आमितु कानिता आंदुमा आजो आहिजी ना ने ऑल अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल दोने चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन में लातिगा बदा आहोगा इगा वे असुली नीमा ची ना और प्राइवेट स्कूल मा मा ची मगानो लिबा अलगा बास दो अनब्रो गिनेजिगा प्रांगा अथसुपगा मोदा ने आ एसोसिएशन में ला होगा ने अचंबया गया आलम्रो गया बस में एक्सीडेंट आदुंगे दे अजगा चाथुगे ने अली लातेगा जिदा ला होगा आलम्रो ट्राइब एवं काजिया मचे एके ऐ दोने ट्राइबल इमुचे ये चो बुगो गया बने प्राइवेट स्कूल मामा आजो अहितोया में आलम्रो में मित्र बिरले नी मचे नी मामा ट्राइबल एवं चे ऐ तो ऐ मेगा जिगा लातेजे ना ने एसोसिएशन में लगा ने काजी हो आजो अहि पगम बवे ए दोने एग्जाम आखावे पुची कैलेंडर आजपा अजिते होस्टेल दोने स्कूल माचे हाथुमु प्रांगा अथुसु इमु बुवे अचुको को माने स्कूल बस आला ए दोने प्राइवेट स्कूल बस मामा आलम्रो आरोगा हेल्पर एतिजी ना लाते होगा बदा होगा ऐसा हो ने मने सी यमे डिस्ट्रिक्ट माचे दिशी सागमु मंजुनाथ आर में बुनी तातो अतिकोचे डीसी ऑफिस माने डिपार्टमेंट आजाहे तालम्रो एमएचए मीटिंग जी ने गने अतिकोचे इमु आरोग्य बने गवर्नमेंट में आया प्रोग्राम है प्राण जोने जी ना लाते बदा आओगा आम हो डिपार्टमेंट आजाहे तालम्रो में एना चीन जो ता उन्जी खीन जो जी ना ने डीसी में लाते और बदा आओगा अतिका माने आयुमुगा ड्रग नाबा अनुचित पहुंची चकाओ जा पपुम पर डीसी लोपसंग सेरिंग में बुनी यूपी आदिको ने एंड कोर्ट मीटिंग जीने का ने गवर्नमेंट में एको बुमाने सा लागे में आई मुगा ड्रग ना बहु गुम चाहूगे ने उन्जी खीन जाओगे अरुण दगा दा लाई बदा आहोगा पपुम पर डिस्ट्रिक्ट मचे सर्कल आदिका उखो मा तांदो गांजा मा एगा अनुजिता ने दिशी में लगा ने लेपोरियां पारां मेंग्यो दो ने सागली अतिकामाचे शियो अजानपो में आरोगा गने गांजामाचे शिहाओ चिपो अतुसुजी ना लाति ओबदा आहोगा दोइमुक रोने हिल्स राजीव गांधी यूनिवर्सिटी माचे फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मा अंबे आवाही अतुसुमु होनी टेस्टिंग लैब अजितेगा बची बुनी आयोपहगा बदा आहोगा नेशनल बी बो एन बी बी मैम अमहाय ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च नेक्टर मैम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को आरोगा गने आ प्रोजेक्ट जोनेगा जिता ला होगा आ दुमा दुईमुक एम एल ए नबाम विवेक तो ने इकिशा इमु कारु उखो गिओगा बता ला होगा एम बी होंडियोस रो काचिमा ने हंता वायरस लाएगा आरामाची एम बे आची गेला मिगिंगे सुतेपा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोने इकिशा इंटरनेशनल हेल्थ अथॉरिटी को आरोगा गने आ एम बे ताउची पुआन जोपगाम बदा आओगा आ रोमा इंडिया माचे इमु कान्या बु जिम्बे ओगा जी खादा लगा ची मैम ऐसा कान्या मैम होंटा वायरस एम बे माचे आची गेगामी अथसु लगा लादा ला होगा ऐतान ची इदुमिस्मी आहो लिमाओ दुबई एचा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ नाली इदमिश्मी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खिया महो एतनी हेंदो अनि मेना चे चाशे छि अहुजे
0: अभी आप सुन रहे थे इदु मिश्मी श्रोताओं के समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में। तो चलिए देर न करते हुए सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत।

श्रोतम दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। ये आकाशवाणी ईटानगर कालून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, इसी के साथ हमारी दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर होती है समाप्त। उम्मीद है कि हमने आप श्रोताओं को भरपूर एंटरटेन किया होगा। एफएम के कार्यक्रम जारी रहेंगे और आपके आगे के सफर के लिए जुड़ने वाले हैं आरजे नीलम। आज की दूसरी प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। तो श्रोताओं दोस्तों, अब मुझे यानी अपने आरजे साथी पूनम को दीजिए इजाजत और अब आप सुनेंगे तांगशा श्रोताओं के समाचारों को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी रेडियो साथी आरजे नीलम के साथ।

अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तांगसा श्रोताओं के पूरे कार्यक्रम को सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज तथा DRM 666 किलो हर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: हमारे प्यारे श्रोता मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। जी हां श्रोता मित्रों, अब तक के सफर में आपके साथ बनी हुई थी आरजे पूनम। जी हां, उम्मीद है यहां तक का आप सभी का सफर बेहद ही सुहावना और मजेदार रहा होगा। आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए आरजे पूनम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता मित्रों, आपको ये भी बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में जी हां शाम के 4:27 हो रहे हैं। जी हाँ श्रोता मित्रों, वीकेंड चल रहा है और आज का मौसम भी काफी खुला खुला साफ है, तो उम्मीद है आप सभी का वीकेंड बेहतरीन बीत रहा होगा। तो चलिए इस बेहतरीन शाम की सफर में जी हाँ इस बेहतरीन शाम की सफर की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के साथ।
1: गुड इवनिंग ईटानगर,

श्रोता मित्र, हमारे जिंदगी की आधी उम्र लगभग पढ़ाई और भागम भाग में ही निकल जाती है। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने जिंदगी में काफी कुछ हासिल भी नहीं कर पाते। हमारे मन में बस आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है और यही सब करते करते जिंदगी बीत जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यात्रा, जी हाँ, घूमना फिरना, यात्रा करना हमारे जीवन में कितनी बड़ी सीख देती है। जी हाँ दोस्तों, यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है और जिंदगी को बनाते हैं और भी मजेदार। जी हाँ दोस्तों, इस पर हम बातें करेंगे आगे। इससे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का। ये पहला गीत शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाजों में जब वी मेट फिल्म से, और इस गीत के बोल लिखे इरशाद कामिल ने और इस गीत को सजाया है प्रीतम ने। तो चलिए इसी के साथ ही आपको बता दें कि जी हाँ दोस्त, हम बात कर रहे हैं यात्रा की, घूमने फिरने की, जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। जी हाँ, यात्रा या घूमना फिरना हमारी जिंदगी में

जीने का तरीका बता सकता है, हमें उन बातों से रूबरू करवा सकता है जिसके बारे में हम सभी सिर्फ सुनते आ रहे हैं। यात्रा करने से, जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात समझ आएगी कि सीमा रेखा, जी हाँ, बॉर्डर लाइन सिर्फ नक्शों पर बना होता है। असल जिंदगी में ये जमीन एक जैसी ही होती है, दोनों तरफ की जमीनों में कोई अंतर नहीं होता। जब आप यात्रा के दौरान किसी ऐसे स्थान पर घूमने जाते हैं जहां आपकी भाषा वाले लोग ना हो और फिर आपको वहां अच्छे लोग मिल जाए और उनसे दोस्ती हो जाए, ऐसे में आपको एक बात समझ आएगी कि भाषा महज एक संचार का माध्यम है, यानी कि कम्युनिकेट करने का माध्यम है। इससे हमारी दोस्ती और आपसी तालमेल में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, कई बार होता है कि हमें लोगों से घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता, बात करने में काफी हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन जब आप यात्रा पर निकलते हैं तब आपकी कमजोरी भी आपसे कोसों दूर चली जाती है। ऐसे में आप एक अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको बताया यात्रा करने के बहुत सारे फायदे। जी हाँ, यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इसी के साथ ही आगे हम आपको सुनवाना चाहते हैं एक और गीत।

बचपन से हम सभी इतिहास यानी कि हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन काफी कम ही लोग होते हैं जिन्हें इतिहास में महारत हासिल होती है। ऐसे में ऐतिहासिक स्थलों की सैर करना आपको इतिहास में महारत हासिल करा सकता है। इससे आपको वो सब कुछ जानने और देखने को मिलेगा जो आप पढ़कर कभी नहीं जान सकते हैं। यात्रा करने से, जी हाँ दोस्तों, नई नई जगह घूमने से, आने जाने से आत्मविश्वास बढ़ता है जो जिंदगी के हर कदम पर आपका साथ देती है। इससे एक आम इंसान भागदौड़ की जिंदगी से सुकून की सांस ले सकता है। कठिनाइयों और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता आप में उत्पन्न होगी जिसकी हम सभी में कमी होती है। जी हाँ दोस्तों, यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक है। जिंदगी में जब भी आपको मौका मिले किसी ना किसी जगह पर घूमने के लिए जरूर जाइएगा। आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ नया अनुभव जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का ये आखिरी गीत।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे ये आखिरी गीत कार्यक्रम का हाईवे फिल्म से एआर रहमान की आवाज में। और इसी के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। श्रोता मित्र, आपको बताते हैं कि आगे आप सुन पाएंगे बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और 5 बजते ही आप सुन पाएंगे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। फिलहाल आप आनंद लेते रहे इस गीत का।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के 2 दिवसीय दौरे पर। एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष प्रोफेसर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पटनायक से मुलाकात की। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग ने अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का किया उद्घाटन। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने, उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी ली शपथ। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी, टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के 2 दिवसीय दौरे पर है। दौरे के पहले चरण में कल मंत्री ने लिकावाली और सिली गांव में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न आधारभूत संरचना एवं परियोजना स्थलों का दौरा किया। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि वे शिक्षा के माध्यम से समाज की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन करें, ताकि युवा पीढ़ी अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रख सके और उसे आगे बढ़ा सके। मंत्री ने लिकावाली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की सड़कों पर यात्रा भी की तथा राज्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित की जा रही सड़कों और पुलों की गुणवत्ता एवं प्रगति का मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया। एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष प्रोफेसर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पटनायक से मुलाकात की। निवारक स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने एम्स गुवाहाटी से अनुरोध किया है कि वह क्षेत्र विशेष कारणों की पहचान करने के लिए समर्पित अध्ययन और अनुसंधान पहल करे और पूर्वोत्तर की सामाजिक सांस्कृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहारिक उपायों की सिफारिश करे। एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन और पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर संजय ने राज्यपाल को आश्वासन दिया है कि नाहरलगन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज के साथ स्वास्थ्य सेवा सहयोग को मजबूत करने के लिए एम्स गुवाहाटी अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रदान करेगा। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग में अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। विधायक नामा विवेक द्वारा उद्घाटित ये प्रयोगशाला अरुणाचल प्रदेश के मधुमक्खी पालन क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये पहल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB द्वारा वित्त पोषित और एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है, जिसे नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च NECTR द्वारा RGU के सहयोग से लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित हनी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी भूमि पूजन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसे क्षेत्र में एकीकृत शहद प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तंत्र को और मजबूती मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल RN रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम करते हुए जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। श्री शुभेंदु ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान पहुंचा है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा है कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 135वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोची से बैशाख के अवसर पर गुरु रविन्द्र देव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्यपाल केंद्र में इशारों पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही है। उधर यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्र नेतृत्व निर्णय लेगी। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रियों के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
4: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें स्थान पर है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर में और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकथॉन का आयोजन किया गया। हॉर्मुज जलदमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों को दुबई में इलाज किया जा रहा है और वे सुरक्षित है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल ही में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्थान ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नारंग कोया। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर सुबेंदु अधिकारी टुक ओट एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल टुडे, हेडिंग द फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट इन द स्टेट। गवर्नर आर एन रवि एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू मिस्टर अधिकारी एट ए ग्रैंड सेरेमनी हेल्ड एट द ब्रिगेड परेड ग्राउंड, कोलकाता। फाइव कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑल्सो टुक ओट अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर। द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर दिलीप घोष, अग्निमित्र पोल, अशोक कीर्तानिया, निश्चित परमानिक एंड Sudhiram Tudu. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi today congratulated Subendu Adhikari on taking oath as the Chief Minister of West Bengal. Ravindra Jayanti is being celebrated today on Pochishi Boishakh, marking the 165th birth anniversary of Rabindranath Tagore. Cultural functions are held globally with major celebrations at Santi Niketan, Visva Bharati University and throughout West Bengal and Bangladesh, featuring Rabindra Sangeet, poetry, dance and drama. Harsh Malhotra, Union Minister of State for Corporate Affairs and Ministry of Road Transport and Highways, is on a two-day visit to Lower Siang district of Arunachal Pradesh. During the first leg of its inspection tour yesterday, the minister visited various infrastructure and project sites at Likhabali and Sili village funded by the Government of India. The minister appealed to teachers to preserve and promote the cultural heritage and traditions of society through education so that the younger generations can sustain and uphold their unique identity. Minister Malhotra also travelled along PMJSY roads from Likhawali and conducted spot verification of the quality and progress of the roads and bridges being executed by the State Rural Works Department. The president of AIIMS Guwahati, Professor Dr. Bhupendra Kumar Singh Sanjay, called on the governor of Arunachal Pradesh, Lieutenant General K.T. Parnaik, retired at Lok Bhavan, Itanagar today. Stressing the importance of preventive health care, he requested AIIMS Guwahati to undertake dedicated studies and research initiatives to identify region-specific causes and recommended practical remedies suited to the socio-cultural and geographical conditions of the Northeast. Professor Sanjay, a renowned orthopedic surgeon and Padma Shri awardee, assured the governor of AIIMS Guwahati's fullest cooperation and support to strengthen healthcare collaboration with Tomo Riba Institute of Health and Medical Sciences, Nahalagan. The formation of a new government in Tamil Nadu is further delayed for the want of support to form a majority. The National General Secretary of CPIM, Baby, has said that it was the duty of the governor to invite the single largest party to form the government. Speaking to media in Chennai, he accused the governor of using delay tactics depending on the commands from Delhi. In a related political development, AMMK Chief TTV Dinakaran is demanding action by the governor on a forged letter of support from his party MLA to TVK. National Legal Services Authority is organizing the second National Lok Adalat of 2026 across the country today. Talking to Akashvani News, Member Secretary NALSA Sanjeev Pandey said that the initiative aims to provide amicable settlement of disputes and reduce the burden on courts through participatory and people-centric mechanisms. He said that a wide range of disputes are taken off during the Lok Adalat, including criminal compoundable cases, check disowner matters and bank recovery disputes. The government has appointed Lieutenant General N.S. Raja Subramani as the next Chief of Defence Staff. Ministry of Defence said that Lieutenant General Subramani will also serve as Secretary, Department of Military Affairs with effect from the date of assumption of charge and until further orders. He will assume office after General Anil Chauhan completes his tenure on the 38th of May. Meanwhile, Vice Admiral Krishna Swaminathan has been appointed as the next chief of the Naval Staff. He will succeed Admiral Dinesh Kumar Tripathi, who retires on the 31st of May. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Atal Pension Yojana have completed 11 years of providing social security cover to citizens across the country. In IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur. The match will start at 7:30 p.m. That's all in this news bulletin. Namaskar.
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
7: अपे आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ वा नोक्ते प्रोग्राम अथु रंगजथा वानबंगा सानपोत दंग रिन रिन नंग नोक्ते को बोच चोतातकत तेजा हुनी बाद इकुतारी Mejang hajat ni rok ni irokpa. Kobocho kotepe wango sosia. Lower Siang district nang ni ni rang Harsh Malhotra, Union Minister State for Corporate Affairs and Ministry of Road Transportation and Highway maja inspection rang hokhomwa. Government of India ngawa fund me anyan huanta kardu Taipodia District Hospital Likabaliwa Jal Jeevan Mission Drinking Water Project Likabali thenang PM Shri Upper Primary School Sili Hanang, PM GSY Lamme Likabali Lamnang, State Rural Work Department Hemethun Lame Hokomba. Malhotra me Chanto Nyab Heto Tenang, Nana He Nang, Nyab Videhenang, Nang Ha Dangin, Nang Niam Rang, Nang Jab Kapmin Heto Min Name Ngatienga. Polo Colony Nahalagan Nang Anti Drug Operation Co. ICR Nahalagan Police me Drug sangte Vijay Parak Rok Rom Rangpa Lalanang Hukut Baja ko Choloika. Atedam nang Rok Rom Lak Heroin Nitrazepam Tablet BG Hajat Kuchai Rok Kesh Choloika. Are operation pe Inspector Krishnedu Dev OCPS Narlagan pe Tunlame Motkadwa. All Arunachal Pradesh Private School and Children Welfare Association me Maja Chanto Private School ko Nyongho Vaho Nana Hinang, Wani Nana Tokomin, Chanrokomin, Nyavi Tuk Min Name, Yin Pat Minga. Arudamko Private School Nang Min Nang Katpe, Nang Katpe, Kap Rang Ladrit Mindiko, Chanto School Buses He Kokomin, JSOC Verification, Hungbat Me, Huan Rangaika. Manjunath RIAS Nang Abang IAS Officer, Deputy Commissioner Rang, Shiomi District Ko, Motkatmin. Ate me DC Conference Hall Tato ng Chanto Head of Officers dam ng Review Meeting tongwa. Ate me ng Areshiomi District ng Minyan ng Hadang Rang Ladrit Min Kam He Santamtam Motka Rang Chien Ka. Ate me Chanto Head of Officer ng Rom Rom Me Punriri ng Hadang Rang Motka Min Nga Me Hongjab Ka. Hukut Badja ko Kam Pe Punriri Mot Rang Diko Awareness Campaign Rang NCURD committee me anti drug measure koko meeting thienwa papumpare deputy commissioner lobsang siring me mengyo the pe cannabis kit the are the pe jajje rang sok rang ngai ka are nang hadang nang arang rang lakhet min ade de hong phok pe ngin han ba nga me hong jap ka Rajiv Gandhi University Doimung Food Technology Department ng a State of the Art Honey Testing Laboratory pe maja inaugurate huan ka. Are rangvoja ko MLA Nabam Vivek Hokhomba. Ate me are nyati nga ko ko kam pe punriri motkat rang ngay ka. Are project pe National Bee Board me fund huan ka. Diko North East Center for Technology Application and Rich dam ko Rajiv Gandhi University Ruam me motkat min. Union Health Ministry me hanta virus wa khunte he nang chosok rang diko are khun pe छत पे रेखुन छत पे नक्च जाए का रंग नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिखो चंतो इंटरनेशनल हेल्थ ऑथोरिटीज दमदंग रूल में मुलकाई का आई एच आर जून में ना जून में वानी इंडिया मी न्यान नंग ऑब्जर्वेशन रंग इंटरनेशनल हेल्थ प्रोटोकॉल दमदंग थियन मंग का ना में चौताद की थजा ब्रिगेडेड पैरेड ग्राउंड कोलकाता नंग मिस्टर सुवेंदु अधिकारी में अबंग बीजेपी चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल रंग ओट टेकिंग हुआ का आरती दम को वान बंगा कैबिनेट मिनिस्टर रंग मिन चीफ मिनिस्टर दम को ओट टेकिंग हुआ वा तेजा नंग नोक देखो बोत पे अको जो लातोन मंगता अरो नंग नोक तेरवन यान से चौतात मंगन

अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से समाचार। पहले आपने सुना हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, अभी आप सुन रहे थे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि नुक्ते श्रोताओं के पूरे कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा TRM 666 किलो हर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:07 हो रहे हैं। जी हाँ श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब हम इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और पेश करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

श्रोतमित्र आप सुन रहे थे ये बेहद ही खूबसूरत गीत राजनीति फिल्म से मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, आज हम आपके लिए गीतों के साथ एक कहानी लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, संसार में कोई सबसे बड़ा धर्म है तो वो है मानवता का धर्म। जिन इंसान के अंदर मानवता है वो सब धर्मों में श्रेष्ठ है। मानवता कभी भी किसी की जाति या धर्म नहीं देखता, बल्कि निस्वार्थ भाव से हर मानव की सेवा करना ही अपना धर्म समझता है। तो चलिए इसी पर आधारित एक कहानी हम आपको सुनवाते हैं। नागार्जुन प्राचीन समय में एक महान रसायन शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने दिन रात काम करके कई असाध्य रोगों की दवा बनाई। काम इतना बढ़ गया कि उन्हें अब एक सहायक की आवश्यकता महसूस हुई, यानी कि असिस्टेंट की जरूरत हुई। उन्होंने राजा से विनती की कि काम बढ़ जाने के कारण अब उन्हें एक सहायक की आवश्यकता है। राजा ने उन्हें कहा कि अगली सुबह वो दो नौजवानों को भेज देंगे, उनमें से जो ज्यादा योग्य हो उसे वे अपना सहायक बना ले। अगली सुबह नागार्जुन के पास दोनों जवान आए। दोनों ने बराबर ही शिक्षा प्राप्त की हुई थी, दोनों की योग्यता भी एक जैसी ही थी, लेकिन नागार्जुन को तो बस एक ही सहायक चाहिए था। ये देख नागार्जुन सोच में पड़ गए कि वे किसे अपना सहायक बनाए और किसे नहीं। कुछ देर सोचकर उन्होंने दोनों को एक पदार्थ दिया और कहा, ये कौन सा पदार्थ है इसके बारे में आपको खुद ही जानकारी प्राप्त करनी है और एक रसायन बनाकर लाना है। रसायन देखने के बाद मैं ये निर्णय लूंगा कि कौन मेरा सहायक बनेगा। दोस्तों, दोनों नौजवान नागार्जुन को नमस्कार करने के बाद चलने ही वाले थे कि नागार्जुन ने कहा, जाते समय राजमार्ग से होते हुए जाना। नागार्जुन ने ऐसा क्यों कहा ये तो दोनों को ही पता नहीं लगा, फिर भी दोनों चले गए। दोस्तों, आगे क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगा हर्ट्स पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात, और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ट्रैक का। श्रोता मित्रों, हम आपको कहानी सुनवा रहे हैं, तो चलिए कहानी में आगे क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। श्रोता मित्रों, कुछ दिन बीते, दोनों जी हाँ दोनों फिर एक साथ नागार्जुन के पास पहुंचे। राजा भी नागार्जुन के साथ ही थे। उन नौजवानों में से एक उत्साहित और प्रसन्न नजर आ रहा था, वहीं दूसरा उदास था। नागार्जुन ने जब रसायन दिखाने को कहा, तो पहले नौजवान ने अपना रसायन दिखाया, उसके गुण दोष बताए। नागार्जुन उस नौजवान से प्रभावित हुए। सब कुछ पूछ लेने के बाद नागार्जुन ने दूसरे नौजवान से अपना काम दिखाने को कहा। इस पर उस नौजवान ने बताया कि वो रसायन तैयार नहीं कर सका। नागार्जुन ने जब कारण पूछा, तो उसने बताया, आपके कहे अनुसार मैं राजमार्ग से जा रहा था, वहां पर मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसकी हालत बहुत खराब थी। कोई भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं कर रहा था। मुझे उस व्यक्ति पर तरस आ गया, फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। उसकी देखभाल की, ये सब करते हुए मुझे इस पदार्थ से रसायन बनाने का समय ही नहीं मिला। ये सब सुनने के बाद नागार्जुन ने कहा, ठीक है, कल से तुम मेरे साथ काम करोगे। मैं तुम्हें अपना सहायक नियुक्त करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ। ये सुनकर राजा तुरंत बोले, लेकिन नागार्जुन, इस नौजवान ने तो रसायन बनाया ही नहीं, तो फिर तुम इसे अपना सहायक क्यों नियुक्त कर रहे हो? इस पर नागार्जुन ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे पहले से इस बात का बोध था, यानी कि वो ये जानते थे कि राजमार्ग पर एक बीमार व्यक्ति है, इसलिए मैंने दोनों को राजमार्ग से होकर जाने को कहा था। पहले नौजवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि दूसरे नौजवान ने निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा की और मानवता का धर्म निभाया। ऐसे रसायन का क्या लाभ जो किसी के प्राण ना बचा सके? चिकित्सा करने के लिए मानव बनना बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति में मानवता नहीं है, वो किसी की चिकित्सा यानी कि इलाज कैसे करेगा? इसलिए मैंने दूसरे नौजवान को अपना सहायक नियुक्त किया। राजा

नागार्जुन का उत्तर सुनकर उनकी सोच देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्रोता मित्रों, उम्मीद है कि मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी पर आधारित ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी और इसके साथ आपने एक सीख, जी हाँ, मानवता का सीख जरूर सीखी होगी, उम्मीद करते हैं। तो चले इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

0: जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे हिंदी मीडियम फिल्म से गुरु रंधावा की आवाज में ये गाना, और इसे गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब यहीं पर संपन्न होता है। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आप जुड़े रहे अरुण एफएम के साथ, आगे आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम शाम की महफिल। फिलहाल हम ले रहे हैं ब्रेक।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 में।

सुकून बस इतना ही काफी है जिंदगी में यारा, फासलों में रह कर भी तू दिल के सबसे करीब है। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे शाम की महफिल कार्यक्रम का ये पहला बेहद ही खूबसूरत प्यारा गीत अलका याग्निक की आवाज में, दिल क्या करे फिल्म से। उम्मीद है आप सभी को भी ये गीत पसंद आए होंगे। श्रोता मित्रों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं एक और बेहद ही प्यारा गीत।

जी हाँ दोस्तों, अरिजीत सिंह की आवाज़ में दिल झूम झूम गाना चल रहा हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इस वीकेंड की शाम में अरुण एफएम के साथ झूम रहे होंगे या फिर गुनगुना रहे होंगे। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 MHz पर, और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का। उम्मीद है कार्यक्रम में सुनवाए जा रहे हैं जो गीत है आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में एक और गीत, लाल इश्क।

रामलीला फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में आप आनंद ले रहे थे। जी हाँ श्रोत मित्र, इस गीत के साथ ही शाम की महफिल कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्रों, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

जी हाँ श्रोता मित्रों, बचपन हर गम से बेगाना होता है, कोई फिक्र ना चिंता, जीवन खेल सा लगता है। सुख मिलते हैं राहों में फिर के, घर तो जेल सा लगता है, हो इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं गीत गाता चल फिल्म के ये बेहतरीन गाने। आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम और आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दिल से दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात
3: बस आपके नाम
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगा

श्रोता मित्र, इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, बता दें कि आपको फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के बेहतरीन नगमे। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा

श्रोता मित्र, इस गीत का आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। जी हाँ, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ अब हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। जी हाँ, हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम फिलहाल यहीं पर संपन्न होता है। आपको बताना चाहेंगे कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। फिलहाल कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आदि श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे जारी रखने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स तथा DRM 666 किलोहर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर। तो चलिए अरुण FM के कार्यक्रमों को आगे जारी रखते हुए पेश करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, आज के कलाकार। आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम आज के कलाकार में तहे दिल से स्वागत है। श्रोता मित्रों, आज के हमारे कलाकार फनकार हैं वे जो अपनी आवाज के लिए मंच ढूंढ रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनके हाथ में कलम थमा दी। जी हाँ श्रोता मित्रों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के आज के दौर के बेहतरीन गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य की। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि अमिताभ भट्टाचार्य ने कभी नहीं सोचा था कि उनके लिखे शब्द लोगों की मोहब्बत, दर्द और यादों की आवाज बन जाएगी। उनका सफर बताता है कि कभी कभी मंजिल वही नहीं होती जिसके लिए हम निकले होते हैं। श्रोता मित्रों, हम बात करेंगे जी हाँ गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य की, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं उनके द्वारा लिखे ये खूबसूरत गीत।

16 नवंबर 1976 को लखनऊ में जन्मे अमिताभ भट्टाचार्य एक ऐसी बंगाली परिवार में पले बड़े जहां पुरानी हिंदी फिल्में गानों का गहरा असर था। साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र आनंद बख्शी और गुलजार जैसे गीतकार उनके आदर्श थे। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाएं पूरी करने के बाद 1999 में वो एक ही सपना लेकर मुंबई पहुंचे प्लेबैक सिंगर बनने का। लेकिन हकीकत आसान नहीं थी। करीब 8 साल तक वे म्यूजिक डायरेक्टर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। हाथ में डेमो कैसेट लेकर कोई बड़ा मौका नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने कंपोजर प्रीतम के असिस्टेंट के तौर पर काम किया। कभी कभी तो बिल पहुंचाने जैसे छोटे काम भी किए और इसके साथ ही विज्ञापनों के लिए जिंगल लिखने का काम भी शुरू किया। उस समय ये उनके सिर्फ जरूरत थी, करियर नहीं। अमिताभ भट्टाचार्य के बॉलीवुड सफर में एक बहुत ही अहम मोड़ तब आया जब उनकी दोस्ती संगीतकार अमित त्रिवेदी से हुई। ये दोस्ती सिर्फ निजी नहीं थी बल्कि उनके पेशेवर जीवन को भी एक नई दिशा देने वाली साबित हुई। अमित त्रिवेदी जब गानों की धुनें तैयार करते थे तब उनकी मदद करते हुए अमिताभ भट्टाचार्य ने बिना मतलब की आवाजें डेमी साउंड इस्तेमाल करने के बजाय अस्थायी गीत लिखने शुरू किए। उस दौर में अमिताभ खुद को एक लेखक के रूप में सामने नहीं लाना चाहते थे। उनका सपना एक गायक बनने का था और उन्हें डर था कि अगर लोग उन्हें गीतकार के रूप में पहचानने लगे तो उनका गायकी का सपना पीछे छूट जाएगा। अमिताभ भट्टाचार्य जी हाँ, इसी वजह से उन्होंने अपने शुरुआती काम में अपने नाम की जगह दूसरे नाम का इस्तेमाल किया था। श्रोता मित्रों आपको बता दें कि साल 2009 में फिल्म देवडी के साथ सब कुछ बदल गया। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित इस अलग और साहित्यिक फिल्म को एक बिल्कुल नए और अनोखे साउंडट्रैक की जरूरत थी। इस फिल्म में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गाना इमोशनल अत्याचार शामिल किया गया जो देखते ही देखते लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया। ये गाना अमिताभ ने एक कॉफी शॉप में बहुत जल्दी जल्दी लिखा था। इसमें जानबूझकर मजाकिया और अतिरंजित गायन शैली अपनाई गई थी ताकि गाने का प्रभाव अलग लगे। जब अनुराग कश्यप ने इस गाने को फिल्म में रखने का फैसला किया तो अमिताभ को काफी शर्म महसूस हुई। उन्होंने फिल्म की टीम से ये तो कह दिया कि गायन का श्रेय किसी फर्जी नाम को दे दिया जाए क्योंकि वे खुद सामने नहीं आना चाहते थे। लेकिन गाने की जबरदस्त सफलता ने अमिताभ भट्टाचार्य को अपनी असली ताकत का एहसास करा दिया। लोगों ने उनके शब्दों को पसंद किया और उनके लेखन की खूब तारीफ हुई। अमित त्रिवेदी ने भी उन्हें अपने काम का पूरा श्रेय लेने के लिए प्रोत्साहित किया। तो चलिए आपको सुनवा रहे हैं इमोशनल अत्याचार गाना।

छोड़ो मित्रों, आपको बता दें कि अमिताभ भट्टाचार्य की जीवनी में उनकी लेखन शैली सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। उर्दू शायरी भारी शब्दों और जटिल उपमाओं से भरे इस फिल्मी दुनिया में अमिताभ भट्टाचार्य खुद को अलग बनाते हैं अपनी सरल और रोजमर्रा की भाषा से। उनका मानना है कि गीतों का काम शब्दों का दिखावा करना नहीं, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाना होना चाहिए। वे खुद को कहानी का सेवक मानते हैं, यानी उनका गीत फिल्म की भावना और कथानक का हिस्सा होता है, ना कि सिर्फ सुंदर शब्दों का प्रदर्शन। अमिताभ भट्टाचार्य ने एक बार कहा था कि अगर मेरी माँ बिना पूछे उस शब्द की भावना नहीं समझ सकती, तो मैं उस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करता। तो इसी सोच की वजह से उनके गीत सुनने में बातचीत जैसे लगते हैं, लेकिन दिल को गहराई से छू जाते हैं। वे मुश्किल और ज्यादा औपचारिक शब्दों से बचते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ही आपको सुनवा रहे हैं उनके द्वारा लिखा ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 MHz पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम। जी हाँ, आज के कलाकार का और कार्यक्रम के तहत आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, जी हाँ, दिग्गज गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य की। दोस्त, अमिताभ भट्टाचार्य ने अपने करियर में बॉलीवुड संगीत जगत के लगभग हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया है। उनकी खासियत ये है कि वे हर संगीतकार की शैली को समझकर उसी के अनुसार शब्द रचते हैं, जिससे हर गाना अलग और यादगार बन जाता है। जैसे संगीतकार प्रीतम के साथ उनकी जोड़ी ने कई बेहद लोकप्रिय और भावुक गाने दिए हैं। फिल्म ए दिल है मुश्किल का पूरा एल्बम, ब्रह्मास्त्र का ये रोमांटिक गीत जो हमने अभी आपको सुनवाया केसरिया, और ये जवानी है दीवानी का पसंदीदा गाना कबीरा, इसी सहयोग का नतीजा है कि इन गीतों ने न सिर्फ चार्ट में जगह बनाई बल्कि लोगों के दिलों में भी खास जगह बना ली है।

इमोशनल अत्याचार से लेकर चन्ना मेरे यहाँ तक, कबीरा से लेकर केसरिया तक, उनके गाने, जी हाँ, अमिताभ भट्टाचार्य के गाने आज के भारतीय जीवन की आवाज बन चुके हैं। रोजमर्रा के हिंग्लिश को गहरी भावनाओं से जोड़ने और साधारण बातों में बिना भारीपन लाए अर्थ भर देने की उनकी कला ने बॉलीवुड गीतों को एक नया रूप दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिंदी सिनेमा जगत के, जी हाँ, आज के दौर के बेहती उम्दा गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य के। तो अब हम कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर आ पहुंचे हैं। इसी के साथ ही हम आपको सुनवा रहे हैं आखिरी गीत, जी हाँ, उनके द्वारा लिखा गया, फिल्म 21 से।

जी हाँ, आप सुन रहे थे 21 फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, और इसी के साथ ही गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्र, आपको बताना चाहेंगे कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे निशे श्रोताओं का समाचार। फिलहाल आप सुनते रहे ये गीत।

0: อันนั้นพวกคนมาเข้ามาดีซื้อจะป้าตับคุมมาเข้ามต่อเกิดสรุงเงินชิบุยเยอะเฮ้บ่
1: अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार। जी हाँ श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि निश्चित श्रोताओं के पूरे कार्यक्रम को सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होते हैं दिल से दिल की बात। और इस सफर में आपके साथ हैं आपके प्रेरित साथी नीलम। जी हाँ श्रोता मित्र, तो हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो चलिए आपको सुनवाते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

रिश्ता नहीं है दोनों, फिर भी बांधे कोई डोर है। जी हाँ दोस्तों, रिश्ता नहीं है दोनों, फिर भी बांधे कोई डोर है। इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। जी हाँ, मैंने प्यार किया फिल्म से। जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसी के साथ ही हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं प्यार में कभी कभी फिल्म के गाने। ये जो प्रस्तुत है शान की आवाज में ये गीत।

0: तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
1: गीत संगीत
2: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
1: प्यार भरे अल्फाजों में
2: दिल से दिल की बात,
1: बस आपके नाम।
2: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:33 हो रहे हैं और आपको बता दें कि आगे भी हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो आप बने रहे हमारे साथ। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और रोमियो फिल्म से।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे और रोमियो फिल्म का ये गीत मधुबंती बागची और जावेद अली और अन्य साथियों की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर और आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्में गीतों का। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं थामा फिल्म का ये गीत।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 MHz पर, और आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का। श्रोता मित्र, आपको बताना चाहेंगे कि 8 बजते ही आप सुन पाएंगे वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप कार्यक्रम, और 8:15 पर आप सुन पाएंगे अरुणाचल न्यूज रील। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, यानी कि अरुण एफ एम के साथ। इसी के साथ ही हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे ये आखिरी गीत। जी हाँ, तुलसी कुमार और आदित्य की आवाजों में। आपको बता दें कि इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। और इसके साथ ही श्रोता मित्र, आपको बताना चाहेंगे कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप कार्यक्रम।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

Next, All Right by Kendrick Lamar.

कार्यक्रम का। जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के ठीक 9 बज रहे हैं। जी हाँ श्रोता मित्र, इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्रों, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के तहत हम ऐसे गीतों को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो बदलते समय में कहीं पीछे छू चुके हैं, लेकिन ये गीत हिंदी संगीत की दुनिया का एक अहम महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का पहला नगमा हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, देवदास फिल्म से।

जी हाँ श्रोता मित्रों, ये सच है कि सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में। अच्छा है जो रहे कवारा, क्या रखा है प्यार में। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अनजान फिल्म के गाने। आपको बता दें कि आप सुन रहे थे इस गीत को हेमंत कुमार की, माफ कीजिएगा, मोहम्मद रफी की आवाज में। तो आपको बता दें कि आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 MHz पर और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में दिल तेरा दीवाना फिल्म के इसे गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अब हम समापन पर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ आप सभी से अलविदा कहने का वक्त भी हो चला है। उम्मीद है इस तीसरे प्रसारण सभा के कार्यक्रमों का आप सभी ने आनंद लिए होंगे। इन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादन गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण और साथ ही हमारे अन्य सहकर्मी। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से एफएम गोल्ड के कार्यक्रमों को, तो आप जुड़े रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब अपने रेडियो साथी नीलम को दीजिए जाने की अनुमति। आप रखें अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले। लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। आवाज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे, मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेप अप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा, यदि हम भी वही सब करने लगे तो? मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही है आकाशवाणी की, वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते थे। आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं? आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने, जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे, जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहां, जब आप वहां पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था, तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ है।
0: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100 100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल है, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का न केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिसेज जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती है, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7-8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर।
3: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाओ में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
5: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत

0: सरकार आईसीसीआर की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
1: नमस्ते, मेरा नाम दया है। मैं आईसीसीआर के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना बीए रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और पीएचडी का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं। भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम आईसीसीआर के दो टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और आईसीसीआर के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए। और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
2: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
0: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
2: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
0: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं, बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।
1: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी। वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
3: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपस होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहाँ का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। हमेशा मेरी कोशिश होती है।
4: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन

0: मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जैसे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भानुगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे। तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली, तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
1: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है, जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
3: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
4: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
3: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
4: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
3: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
5: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिलके रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पे लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया, इसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
4: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
3: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
4: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
3: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
6: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
3: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
4: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
3: और मैं नेत्रा।
2: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। उधर तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
8: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के वेलिविडूर में महबूबा नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मिश्रा पार्क का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। खेलों में चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। श्री सिंह ने कहा कि बढ़ते खतरे के मद्देनजर इस उन्नत मिसाइल से देश की रक्षा तैयारियों को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारस्परिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। मध्य दक्षिणपंथी नेता पीटर मैग्यार ने आज हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 12 अप्रैल को हुए चुनाव में राष्ट्रवादी नेता विक्टर ऑर्बन पर निर्णायक जीत हासिल की थी। इस जीत के साथ ही श्री ऑर्बन का 16 वर्षों का शासन समाप्त हो गया और मैग्यार की तीजा पार्टी को संवैधानिक बहुमत प्राप्त हुआ। 45 वर्षीय नेता ने भ्रष्टाचार से निपटने और पूर्व प्रधानमंत्री के शासनकाल में न्यायपालिका, मीडिया और अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए लागू की गई नीतियों को रद्द करने का वादा किया है। श्री मैग्यार ने यूरोपीय संघ के साथ हंगरी के तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने का भी संकल्प लिया है। श्री ऑर्बन के शासनकाल में यूरोपीय संघ के साथ तनाव बढ़ गया क्योंकि हंगरी मॉस्को के करीब आ गया और रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के यूरोपीय संघ के प्रयासों का विरोध किया। श्री मैग्यार का प्राथमिक लक्ष्य अरबों यूरो से अधिक के निलंबित यूरोपीय संघ धनराशि को जारी करवाना है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष में प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए अभियान के दौरान नष्ट किए गए प्रमुख आतंकवादी ढांचों की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई एक निर्णायक, सुनियोजित और सटीक कार्रवाई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज रेड स्क्वायर में आयोजित विजय दिवस सैन्य परेड का निरीक्षण करते हुए यूक्रेन में रूस की जीत पर विश्वास व्यक्त किया। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर विजय की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। समारोह में कई विदेशी नेता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री पुतिन ने यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे नाटो ब्लॉक द्वारा समर्थित और हथियारों से लैस एक आक्रामक शक्ति का सामना कर रहे हैं। विश्व दर्पण समारोह आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जहाज निर्माण में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दक्षिण कोरिया द्वारा अमेरिकी जहाज निर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने और उसकी क्षमता बढ़ाने में मदद करने की प्रतिबद्धता के तहत किया गया है, जो द्विपक्षीय व्यापार वार्ता का एक प्रमुख हिस्सा है। वॉशिंगटन में दक्षिण कोरिया के उप व्यापार मंत्री पाक जंग सुंग और अमेरिका के वाणिज्य उप सचिव विलियम किमिट ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पिछले साल के व्यापार

0: समझौते के तहत दक्षिण कोरिया ने अमरीकी जहाज निर्माण क्षेत्र में 150 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने का वादा किया था। इस समझौते में वार्षिक 20 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना है। अमरीका ने कहा कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्री रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस हंता वायरस से प्रभावित एमवी होडियंस क्रूज जहाज से 140 से अधिक यात्रियों और चालक दल को सुनिश्चित निकालने के लिए स्पेन के टेनरिफ पहुंच गए हैं। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने आज विनेश फोगाट को अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 15 पृष्ठों के नोटिस में महासंघ ने कहा कि UWW डोपिंग विरोधी नियमों के अंतर्गत संन्यास से वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य 6 महीने की नोटिस अवधि पूरी न करने के कारण विनेश इस वर्ष 26 जून तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मध्य दक्षिणपंथी नेता पीटर मैग्यार ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जहाज निर्माण में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Renuka with the World News. The headline.